0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying that they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है. एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे. मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है.
3: Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. The Prime Minister will inaugurate the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram. The new Greenfield Airport has been built under the public-private partnership mode at the cost of over 5,600 crore rupees. The Prime Minister will lay the foundation stone of the ASIP semiconductor project at Visakhapatnam. It is Andhra Pradesh's first semiconductor manufacturing facility approved under the India Semiconductor Mission. After concluding his visit to Andhra Pradesh, Prime Minister will reach Mysuru in Karnataka, where he will inaugurate the Swami Vivekanand Cultural Youth Center Vivek Smarak. Social media company Meta's global team, which has been summoned by the center after it restricted Prime Minister Narendra Modi's Facebook post, will be questioned on issues around algorithm bias and their role in public order. Official sources told Akashvani News that Meta's global team is expected to be questioned sometime in the middle of the next week. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. Prime Minister Narendra Modi spoke with the Prime Minister of the United Kingdom, Andy Burnham, and congratulated him on assuming office. In a social media post yesterday, Mr. Modi said during their conversation, they agreed to work together across sectors such as technology, innovation, defense, security, clean energy, education, and people-to-people ties, and take the India-UK Comprehensive Strategic Partnership to new heights. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. At the Commonwealth Games in Glasgow, India delivered another outstanding performance yesterday, clinching historic gold medals in judo, securing a memorable double podium finish in the men's javelin throw, winning a first ever bronze medal in the decathlon and booking places for 10 boxers in their respective finals. And that is the end of this news bulletin.
4: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত। আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ মোবাইলত শুনিবলৈ ডাউনলোড কৰক এপ নিউজ অন AIR অথবা AIR ৰেডিঅ'। এতিয়া শুনক অনুষ্ঠান পৰিচিতি।

जूरी का सौगा जा जाए एंधर बुकुत पोहर है राय जूरी का सौगा

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है। वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते दो गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण। पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोकसत्ता में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw and win a first ever bronze in decathlon. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion toward misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than be punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in National Capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode has been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in the society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
6: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
5: President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public examinations by introducing stricter punishments and establishing fast-track courts. It seeks to strengthen transparency, fairness and integrity in the examination system by creating a robust legal framework while protecting the future of students. The Act includes several key provisions, including stringent penalties such as imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the confiscation of properties belonging to convicted offenders. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. More from our correspondent.
7: The Prime Minister will take a walkthrough of the passenger terminal before inaugurating the Greenfield Allur Sitaramaraju International Airport at Bhogapuram. Built under the public-private partnership mode at a cost of over 5,600 crore rupees, the airport has the capacity to handle 6 million passengers annually. The Prime Minister will also lay the foundation stone for Andhra Pradesh's first semiconductor manufacturing facility under the India Semiconductor Mission at Visakhapatnam. The ASIP project, involving an investment of over 460 crore rupees, will have the capacity to produce about 96 million chips every year. In addition, he will dedicate to the nation and lay the foundation stone for renewable energy transmission projects worth about 9,920 crore rupees and national highway projects worth over 1,880 crore rupees. Allu Murli, Akashwani News, Visakhapatnam.
5: In Karnataka, Mr. Modi will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Center, Viveka Smaraka, at Mysuru in Karnataka today. Our correspondent has the details.
8: Viveka Smaraka, to be inaugurated by Prime Minister in Mysore today, is dedicated to promoting the teachings and philosophy of Swami Vivekananda. The 75,300 square feet facility houses a 4D experience center, exhibition hall, amphitheater, classrooms, conference halls, library, reading room, and a meditation and yoga hall. Sri Ramakrishna Ashrama in Mysore will offer short-term courses and workshops for youth at the Swami Vivekananda Cultural Youth Center. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
5: The Union Cabinet has approved an expanded Khelo India scheme and enhanced assistance to National Sports Federations, ANSFS, with a combined outlay of 36,441 crore rupees for the period 2026-27 to 2030-31. Addressing the media in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision reaffirms the government's commitment to harnessing the power of sports for youth development and nation building.
9: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा स्टेडियम हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो मेंटोरशिप हो उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में उन सब के साथ ये वीविन करेगी
5: West Bengal begins the process of census today, which will be conducted digitally in two phases. The exercise aims to collect updated demographic data through a technology-driven approach, with a two-phase process designed to ensure comprehensive coverage across the state. More from our correspondent.
10: In the first phase, log on to ac.census.gov.in and complete their own details through the self-enumeration system. The second stage of this phase will run from the 16th of August to the 14th of September. During this period, census officials will visit households for house listing and preliminary enumeration. The final phase is scheduled for February next year, when enumerators will collect detailed information on every member of each household, including name, age, gender, caste and religion, for the actual population count. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
5: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POGA case stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POGK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said, facing a violent regime, the people have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. India has urged the international community to scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
11: The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities.
5: India and China will resume border trade through the Nathula Pass in Sikkim today, marking the revival of a key trade route between the two neighboring countries. The resumption of trade will end a six-year suspension that had been placed since 2020 due to the COVID-19 pandemic. The revival of trade is expected to boost cross-border commerce, benefiting registered traders, transport operators and allied businesses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to his Iranian counterpart Abbas Araghchi last evening and conveyed India's deep concerns over the ongoing hostilities in the West Asia region. During the telephonic conversation, Dr. Jaishankar strongly urged that attacks on commercial shipping and seafarers be avoided under any circumstance. He has stressed that India condemns any such attack by any party. The External Affairs Minister said in a social media post that he was also apprised of Iran's perspective on current developments and discussions which are underway. He said India is always supportive of dialogue and diplomacy. Italy has temporarily suspended open border travel with Spain following a sharp rise in migrant crossings into the Spanish enclave of Ceuta from Morocco. The move will affect flights and maritime transport and temporarily suspend Spain's Schengen border-free travel arrangements, which allow people to move freely across 29 European countries. Meanwhile, more than 48,000 migrants have returned to Morocco from Ceuta, where around 60,000 people arrived in recent days. Spain and Morocco have agreed to strengthen measures to facilitate the swift return of all migrants who entered Ceuta illegally. Prime Minister Narendra Modi spoke with the Prime Minister of the United Kingdom, Andy Burnham, and congratulated him on assuming office. In a social media post yesterday, Mr. Modi said during their conversation, they agreed to work together across sectors such as technology, innovation, defense, security, clean energy, education, and people-to-people ties, and take the India-UK Comprehensive Strategic Partnership to new heights. He added that both nations will also collaborate closely to fully harness the trade and investment opportunities presented by the recently operationalized India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement for the shared prosperity and well-being of people of India and UK. At the Commonwealth Games in Glasgow, India delivered another outstanding performance yesterday, clinching two historic gold medals in judo, securing a memorable double podium finish in the men's javelin throw, winning a first ever bronze medal in the decathlon, and booking places for 10 boxers in their respective finals. We have a report.
12: Judo player Asmita Day and Harsh Singh scripted history by becoming India's first ever Commonwealth Games gold medalist in the sport. Asmita clinched the women's 48kg title while Harsh won the yellow medal in men's 60kg category. Yamini Moria added a silver in the women's 57kg event, giving India its best ever Commonwealth Games campaign in judo with two gold and one silver medal. In athletics, Olympic champion Neeraj Chopra won silver in the men's javelin throw while Yashveer Singh secured bronze. Tejaswin Shankar also created history by becoming the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the decathlon, claiming bronze. India's boxers also delivered an outstanding performance, with 10 pugilists winning their respective semi-final bouts to enter the finals. Swati Rakheja, Sports Desk.
5: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, South Interior Karnataka, Konkan, Goa, Kerala and Mahe today. The IMD has also predicted heavy rainfall over Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, West Rajasthan, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and some parts of Northeast India. The weather agency has forecast thunderstorm accompanied by lightning over Gujarat, Chhattisgarh, Vidarbha, Assam and Tripura for today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
13: Thank you, Naresh. Newspapers have prominently covered Prime Minister Modi's video message on their front pages. PM, I forgive children who abused me. Let's show them the way. Headlines, The Indian Express. Pak forces target women, kids in PUK. India calls for global scrutiny. 40 killed in stir since July 27, says the Asian.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.

कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हमारा आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर होगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत और 12:38 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर संगम।

1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और समाचार के बाद हम फिर से लौट आएंगे और आपको सुनाएंगे कार्यक्रम गुंजन 1:10 से। 1:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। और 2 बजे आपको एक बार फिर से सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। और हमारा आज का अंतिम कार्यक्रम है नजराना, जो आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे। और फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम के साथ ही हमारा आज का सैनिक भाइयों का कार्यक्रम समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी अग्रिम जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की।

फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये पहला गीत सुहाग फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। अब सुनिए मोहित चौहान की आवाज में रॉकस्टार फिल्म से ये गीत।

फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में रॉकस्टार फिल्म से ये गीत। प्रसार भारती सभी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। अब आप यूनिपोल आउटडोर एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर के जरिए अपनी व्यावसायिक संस्थानों का विज्ञापन आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र के प्रांगणों में भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र के उप महानिदेशक अभियंत्रिकी के से संपर्क करें।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम आज का गीत।

फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे गुरु रांधवा के आवाज में तुम्हारी सोलो फिल्म से एक गीत, और इस गीत को लिखा है गुरु रांधवा और संगीत दिया है गुरु रांधवा और रजत नागपाल ने। तो आइए आपके साथ मैं भी सुनती हूँ तुम्हारी सोलो फिल्म से ये गीत।

गुरु रांधवा की आवाज में फौजी भाइयों अभी आप सुन रहे थे तुम्हारी सुलो फिल्म से ये गीत। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का दैनिक कार्यक्रम आज का गीत यहीं पर समाप्त होता है।

प्रसार भारती सभी व्यावसायिक संस्थानों के लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। अब आप यूनिपोल आउटडोर एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर के जरिए अपनी व्यावसायिक संस्थाओं का विज्ञापन आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र के प्रांगणों में भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी से संपर्क करें।

इस कार्यक्रम को सुनने से पहले आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों के बारे में। कल रविवार है, रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण प्रारंभ होगा दिन के 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा कल का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर होगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत और 12:38 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सवरंग। एक बजकर 5 पर आपको सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार और समाचार के बाद हम फिर से लौट आएंगे और आपको सुनाएंगे कार्यक्रम गीतिका शीर्षक संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:40 से। दो बजे आपको एक बार फिर से सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हमारा कल का अंतिम कार्यक्रम है गीत अपना धुन पर आई, जो आप सुनेंगे दिन के 2:30। फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम के साथ ही हमारा कल का प्रसारण समापन होगा दिन के 3:00। तो ये थी अग्रिम जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

स्वर संगम कार्यक्रम का ये था पहला गीत, जिसे अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम था मेला। फौजी भाइयों, आप ये कार्यक्रम अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से मीडियम 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। और अभी हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम स्वर संगम। तो आइए कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत मन्ना डे और साथियों के आवाजों में। फिल्म का नाम है सन्यासी।

सन्यासी फम से अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाजों में ये गीत। अब सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में गीत गाता चल, इस फम से ये गीत।

प्रसार भारती सभी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। अब आप यूनिपोल आउटडोर एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर के जरिए अपनी व्यावसायिक संस्थाओं का विज्ञापन आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र के प्रांगणों में भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी से संपर्क करें।

मिली फिल्म से अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अब सुनिए मुकेश और साथियों को, फिल्म का नाम है धर्म करम।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम आप अब से 1:40 तक आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकेंगे 529.1 मीटर पर।

गुंजन कार्यक्रम का ये था पहला गीत जिसे अभी आप सुन रहे थे चुपके चुपके फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी का गीत लिखा ये गीत था और एस टी बर्मन की संगीत। अब सुनिए बॉम्बे टाकीज इस फिल्म से एक गीत। हर्षित जयपुरी का लिखा यह गीत है और शंकर जयकिशन की संगीत आवाज है मोहम्मद रफी की।

आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे अमानुष फिल्म से ये गीत। अब सुनिए ऐसा भी होता है इस फिल्म से गीत। आशा भोसले की आवाज में एसएच बिहारी का लिखा यह गीत है और ओपी नैयर की संगीत।

फौजी भाइयों, आप ये अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर से। मेरियम 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर, वहीं आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 530.1 मीटर पर। अभी हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम गुंजन।

प्रसार भारती सभी व्यावसायिक संस्थानों के लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। अब आप यूनिपोल आउटडोर एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर के जरिए अपनी व्यावसायिक संस्थानों का विज्ञापन आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र के प्रांगणों में भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी से संपर्क करें।

गुंजन कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बक्सी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। आवाजें है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

गुंजन कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में तेरे मेरे सपने फिल्म से गीत। नीरज का लिखा ये गीत है और एसटी बर्मन की संगीत।

अब सुनिए गुंजन कार्यक्रम का अंतिम गीत। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम है पिया का घर। आनंद बक्से का लिखा यह गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत।

फौजी भाइयों अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से। अब से ये कार्यक्रम सुनेंगे केवल आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से। और फौजी भाइयों किशोर कुमार के गाये इस गीत के साथ ही हमारा आज का गुंजन कार्यक्रम भी यहीं पर समाप्त होता है।

अभिजीत की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये बेंगोली गीत। प्रसार भारती सभी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। अब आप यूनिपोल आउटडोर एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर के जरिए अपनी व्यावसायिक संस्थाओं का विज्ञापन आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र के प्रांगणों में भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी से संपर्क करें।

अभी आप सुन रहे थे ये बेंगोली गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला बेंगोली गीत मन्ना डे की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम की ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
3: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे।

0: निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी। विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था। इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। यह हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। समाचार के बाद आप सभी सैनिक भाइयों को मैं अर्चना एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं।

नजराना कार्यक्रम का ये था पहला गीत जिसे अभी आप सुन रहे थे रचना फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। अब सुनिए लता मंगेशकर और तनत अजीज की आवाजों में बाजार फिल्म से गीत।

प्रसार भारती सभी व्यावसायिक संस्थाओं के लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। अब आप यूनिपोल आउटडोर एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर के जरिए आपकी व्यावसायिक संस्थाओं का विज्ञापन आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र के प्रांगणों में भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी से संपर्क करें।

फौजी भाइयों, आप ये कार्यक्रम में सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिष पर से मीडियम एम 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। और अभी हम आपको सुना रहे हैं हमारा आज का अंतिम कार्यक्रम नजराना।

निजराना कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे यशोदास की आवाज में ये गीत लहू के दो रंग फिल्म से। अब सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत इजाजत फिल्म से, आवाज है आशा भोसले की।

और फौजी भाइयों, आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का नजराना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। दिन के 3 बजने वाले हैं, साथ ही साथ समाप्त होता है हमारा आज का सैनिक भाइयों का कार्यक्रम।

Akashvani. आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो टॉक।

0: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के एक नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं नेचुरोपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जो प्राकृतिक उपचार पद्धतियों पर आधारित है। जैसा कि नाम से भी लगता है, ये नेचर या प्रकृति से काफी जुड़ी हुई है। ये शरीर मन और आत्मा के संतुलन पर बल देती है। इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमने रेडियो डॉक्टर के रूप में आमंत्रित किया है योग एवं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट और प्रैक्टिशनर डॉक्टर शालू गुप्ता को। तो डॉक्टर शालू, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: धन्यवाद।
0: तो जैसा मैंने बताया, आज हमारा जो विषय है, हमारे श्रोता जरूर जानने के लिए उत्सुक हो गए होंगे क्योंकि ये एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसको नेचुरोपैथी कहा जाता है। और आज हम नेचुरोपैथी में जो ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स आप लोग फॉलो करते हैं उसके बारे में हमारी जो आपकी जानकारी है आपके माध्यम से श्रोताओं तक हम पहुंचाना चाहेंगे।

0: तो सबसे पहले यही एक प्रश्न उठता है मन में कि ये नेचुरोपैथी किस तरह की चिकित्सा प्रणाली है?
1: देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो एक मुख्य चिकित्सा पद्धति है जिसमें शरीर में पंच महाभूत को हम बैलेंस करते हैं। शरीर पंच तत्व से बना है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश। शरीर में यदि कोई भी तत्व कम है या ज्यादा है तो हमारे शरीर को रोग लगता है। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से पंच तत्व को शरीर में पूर्ण किया जाता है और शरीर को रोग विहीन किया जाता है। असल में प्राकृतिक चिकित्सा यही है।
0: तो जैसा आपने बोला कि जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं हमारे शरीर के और शरीर से बाहर, उनको बैलेंस करना है।
1: हाँ जी।
0: और शायद यही सबसे मुश्किल काम होता है क्योंकि इनका ही जो बैलेंस गड़बड़ाता है वही बीमारियों को जन्म देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कहा गया है मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की यही दवा। तो यदि हमारा बेस ठीक है तो हमें बीमारी लगेगी ही नहीं, इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा करना जरूरी है।
0: जी, तो मैं ये जरूर आगे कार्यक्रम में जानना चाहूंगी आपसे कि आपने बोला कि इसका जो है बचाव करने के लिए शायद ज्यादा जरूरी है, तो क्या उपचार भी किया जा सकता है? ये जरूर मेरे प्रश्न में शामिल रहेगा, लेकिन श्रोताओं से जरूर आग्रह करेंगे उससे पहले कि अगर आपके मन में भी कोई विचार आ रहा है, कोई सवाल आ रहा है, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, तो जरूर डॉक्टर साहब से जुड़िए और अपनी शंकाओं को, अपने प्रश्नों को सही जवाब, सही समाधान के माध्यम से उसको जानिए, समझिए, क्योंकि ये मंच आपके लिए ही है। तो रेडियो डॉक्टर में आज का विषय नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स एंड प्रोसीजर्स और प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह से ये की जाती है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स मौजूद है, इन सब पर जानकारी देंगी हमारी एक्सपर्ट, नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता। छोटा सा प्यारा सा गीत सुनकर वापस आते हैं और आप सभी के प्रश्नों को शामिल करते हैं।

0: शालिनी मित्तल के साथ और आज का हमारा विषय है प्राकृतिक चिकित्सा और आज की हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर शालू गुप्ता। तो हमारे एक श्रोता डॉक्टर साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, आप अपना नाम बताएं।
1: मैडम मेरा नाम रमन है।
0: रमन जी अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
2: मैडम मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से कि किडनी रिलेटेड इश्यूज जो है वो नेचुरोपैथी से ठीक हो सकते हैं?
3: हाँ जी रमन जी, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब यही है कि जिस भी ऑर्गन में आपको प्रॉब्लम आएगी, नेचुरोपैथी ऑर्गन की क्लींजिंग करके ऑर्गन को रेजुवेनेट करती है। अब ये डिपेंड करता है कि किडनी प्रॉब्लम कौन सी एज के किस एज में हुई है। एक सर्टेन एज तक तो होता है कि बॉडी रेजुवेनेट करती है और हर ऑर्गन वापस से रिप्लेनिश हो सकता है, लेकिन अगर 80-85 के बाद कोई बहुत सीवियर किडनी इश्यूज है तो भी नेचुरोपैथी उसे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है। तो प्रॉब्लम है क्या
2: मैम? एज 41 है करंट में, वाइफ है मेरी और प्रॉब्लम जो डायग्नोस हुई है दैट इज सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज।
3: इसमें भी देखिए क्रिएटिनिन लेवल कितना है और बाकी जो पैरामीटर्स हैं कैल्शियम फास्फोरस यूरिक एसिड वो कितना है उसके अकॉर्डिंग।
2: यूरिक एसिड और आपका बाकी जो पैरामीटर्स है ठीक है, थोड़ा सा कैल्शियम और ये मिनरल्स डाउन आता है ब्लड में।
3: एंड हाउ अबाउट द क्रिएटिनिन?
2: फाइन नॉर्मल।
3: ठीक है, फिर ये 98% तो रिकवरेबल है, जो रिकवर हो जाएगा विद नेचुरोपैथी। और नेचुरोपैथी में मेडिसिंस भी नहीं होती हैं, हाइड्रोथेरेपी मड थेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लस सम किडनी पैक्स किडनी बस्ती प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप इनको नेचुरोपैथी कराइए, 30-40 days मिनिमम आप नेचुरोपैथी करानी पड़ेगी आपको। okay. और किडनी डिजीज काफी हद तक रिकवर हो जाएगा।
2: ओके
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी प्रश्न करने के लिए।
2: एक क्वेश्चन और था।
0: हाँ जी पूछिए।
2: एक्चुअली क्या है कि हम देखते हैं जनरली कि बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर्स खुले होते हैं हमारे आसपास, हाउ टू गेट कि हम उसमें अपना करेक्ट कौन सा सही है वहाँ पे, वो कैसे हम लोग उसको पता कर सकते हैं?
3: देखिए थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जिसके पास आप जा रहे हैं उसको कितना एक्सपीरियंस है, और आप थोड़ा सा कस्टमर रिव्यूज पेशेंट रिव्यूज ले सकते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत सालों से प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं और जिन्हें कुछ एक्सपीरियंस अच्छा है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, तो वो आपको उस अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी कि आपने हमसे बात की और प्रश्न किया है। उम्मीद है कि आपको जवाब भी मैडम से सही मिल गया। और ये हमें मैसेज आया है, मोहम्मद इम्तियाज कीर्ति नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून शालिनी जी एंड डॉक्टर जी, मुझे ये बताइए कि ये बीमारी किस बारे में है। तो ये बीमारी की बात हम नहीं कर रहे हैं आज, हम एक चिकित्सा प्रणाली की बात कर रहे हैं जिसको हम नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, तो इसके बारे में ये डिटेल जानकारी चाह रहे हैं आपसे।
3: देखिए प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब समझिए, हम पतंजलि की बात करते हैं तो हम सबको योग जानते हैं हम, तो योग का अर्थ हम सब सब समझते हैं कि आसन, जबकि योग का अर्थ है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम और नियम जिसमें शरीर शुद्धि और आहार शुद्धि, मतलब बॉडी क्लींजिंग बॉडी हाइजीन बॉडी डिसिप्लिन और डाइट क्लींजिंग और डाइट डिसिप्लिन, ये नेचुरोपैथी है। तो जब आप हमें नेचुरोपैथी इसलिए करनी है कि हम बीमार ही ना हो। आप लोग हमेशा डॉक्टर को इसलिए ढूंढते हैं कि आप बीमार होकर डॉक्टर के पास जाएं, पर क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपनी जीवन शैली को इतना डिसिप्लिन रखें कि हम बीमार ही ना हो। तो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स जो होते हैं या जो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र होते हैं वो एक वर्कशॉप की तरह होते हैं, जैसे गाड़ी को आप वर्कशॉप में ले जाते हैं ना कि वो हमेशा ठीक चलती रहे, ऐसे ही शरीर शुद्धि के लिए शरीर के लिए वर्कशॉप है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जहां पर आप जाएं हर 3 महीने या 6 महीने में 8-10 दिन के लिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की थेरेपीज लें, जिसमें मिट्टी चिकित्सा जल चिकित्सा वायु चिकित्सा तेल मालिश ये सब थेरेपीज होती हैं। तो एक अच्छा बॉडी क्लींजिंग आप प्रोसेस कीजिए, तो जब आप ऐसे करते रहेंगे तो आपका शरीर बीमार ही नहीं होगा, और या फिर अगर आपका शरीर 2 साल में बीमार होने वाला है तो उसको 4 साल लगेंगे। तो ये एक प्रिकॉशन है कि हम बीमार ही ना हो।
0: बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ये प्रिकॉशन, ऑलवेज इट इज सेड कि प्रिकॉशन या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आपने जो एक फ्रीक्वेंसी बताई तो वो क्या हर किसी के लिए है या किसी उम्र के लिए खास?
3: जनरली देखिए जो 20 से 40 साल की उम्र है, जब इंसान को कोई होश नहीं है सिर्फ काम और बिजी शेड्यूल मीटिंग्स ऑफिसेस, तो उस शेड्यूल में कम से कम हर 3 महीने में 10 दिन आप प्राकृतिक चिकित्सा जरूर कराएं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो अपने ऊपर बहुत ध्यान दे पाते

0: जिनका लाइफस्टाइल बड़ा सुकून वाला है वो हर 6 महीने में जा सकते हैं, लेकिन बाकी सबको हर 3 महीने में 10 दिन शायद कोई बड़ा समय नहीं है।
1: बिल्कुल, अपने
0: हम वेकेशन पे भी जाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए 10 दिन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जरूरी नहीं आप किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाकर रहें, आप एक ओपीडी में भी जा सकते हैं जिसमें 2 से 2.5 घंटे का प्रोसेस आपका रोज रहता है, लेकिन आपका प्राकृतिक चिकित्सा को चूज करने का जो वो है क्राइटेरिया वो बड़ा श्योर होना चाहिए कि वो एक अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक हो,
1: जैसा अभी हमारे एक श्रोता।
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी, एक और श्रोता फोन लाइन पर है। हेलो।
2: हेलो
1: जी,
2: बात कर
1: जी। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है, बताएं प्रश्न करें।
2: थैंक यू मैम। मैम जी नमस्ते। सालू मैम
1: नमस्कार।
2: मैडम मेरा एक छोटा भाई है, 2-3 साल छोटा है, मतलब 30-31 साल का है वो।
1: हाँ जी।
2: तो उसके पैरों में नसों में दिक्कत होती है, पैरों नसों में, और उसमें उसमें दिक्कत होती है कि उसको एक तो दर्द होता है और कभी कभार चलने फिरने में दिक्कत महसूस करता है, इस विषय में बताइए हमें।
0: देखिए इसके लिए थोड़ा सा मुझे डिटेल में उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्या तकलीफ है, कैसी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक डिजीज है या नहीं है। लेकिन जो आपकी बात सुनकर अगर मैं कुछ निष्कर्ष निकालूं तो इसमें जो प्राकृतिक चिकित्सा में हम कर सकते हैं, यदि पैरों में दर्द है और कोई नसों की प्रॉब्लम है तो पैरों का गर्म ठंडा फुट बाथ वो बड़ा यूजफुल होता है, जिसमें आप 2 बाल्टी लें, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, तो 3 मिनट गर्म पानी की बाल्टी में पैर रखें और तुरंत 1 मिनट ठंडे में रखें, फिर 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, फिर 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा। तो ये 3:1 वाला जो फुटबाथ है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है किसी भी पैर की तकलीफ के लिए, चाहे वो वेरिकोज वेन्स हो, चाहे वो घुटनों में तकलीफ हो, चाहे कुछ और हो। इसके साथ साथ
2: मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है।
0: हाँ, मतलब अल्टरनेट 3:1। सेकेंडली आपको तेल मालिश का बहुत फायदा होता है जिसमें ऊपर की तरफ तेल से मसाज करते हैं। और थर्डली आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना है, हमें सिर्फ पेट नहीं भरना है, हमें ये देखना है कि हमारी डाइट में पोषण प्रॉपर हो। तो उसके लिए आपको किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास बैठकर परामर्श लेकर सही तरीके से इनका खान पान का एक चार्ट बनवाना पड़ेगा।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी कॉल करने के लिए। और आपने डाइट प्लान की भी बात की डॉक्टर साहब, तो क्या नेचुरोपैथी में डाइट प्लान को भी कुछ बनाया जाता है कुछ?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ ही है कि हमें प्राकृतिक तरीके से ठीक होना है। तो इसमें जैसा मैंने कहा था पंच तत्व को हम पूर्ण करते हैं, बैलेंस करते हैं बॉडी में। और दूसरी चीज है पंच तत्व पूर्ण होंगे ही तभी जब शरीर शोधन होगा, आहार शोधन होगा और फाइनली विचार शोधन होगा। इसलिए हम कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा इज अ ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। अगर हमारा भोजन सही नहीं है, क्योंकि भोजन हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल है, तो सबसे बड़ी चीज है आहार। आहार का सबसे बड़ा रोल रहता है हमें ठीक करने में। तो आजकल हमने ये सोचा है हम जो मर्जी जब मर्जी जिस मर्जी समय खाते हैं, तो आहार को सबसे ज्यादा कंट्रोल और किस प्रोपोर्शन में आप खाएं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट बनेगा डिफरेंट डाइट प्लान।
1: कस्टमाइज्ड।
0: हाँ जी
1: ठीक है। यशपाल जी हमसे प्रश्न कर रहे हैं द्वारका दिल्ली से। गुड आफ्टरनून टू डॉक्टर शालू एंड रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल मैम, अनदर वेरी गुड टॉपिक, थैंक्स। आपको भी धन्यवाद। इनका क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ओवर आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट?
0: देखिए सबसे पहली बात तो आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा ऐसे कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो पूर्णतः मेडिसिन्स पे चलते हैं, मतलब दे हैव लॉट ऑफ मेडिसिन्स जो आपको खानी होती हैं। मगर प्राकृतिक चिकित्सा में मेजर है कि फूड इज द मेडिसिन, कि हमारा भोजन ही हमारी औषधि है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग प्रकृति से रिलेटेड ही थेरेपीज देते हैं, जैसे मैंने कहा मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा। हम आपको जीवन जीने की शैली सिखाते हैं बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, और उसके साथ हम आपको आहार डाइट भी हम आपको बताते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होगा। जो प्राकृतिक चिकित्सक आपको औषधि देगा उसमें शायद कोई त्रिफला या आंवला या जीरा या मेथी दाना कुछ ऐसी मेडिसिन्स होंगी, लेकिन आयुर्वेदा में शायद आजकल मेडिसिन्स बहुत ज्यादा रेडीमेड आपको मेडिसिन्स मिल जाती हैं। तो हमें शायद ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ना सुधारें, हम मेडिसिन्स खाकर बेटर हो जाएं। लेकिन अल्टीमेटली जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको ये संदेश जरूर देना चाहूंगी कि जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेंगे, हमारी सर्कैडियन रिदम जब तक नहीं सही से चलेगी और जब तक आप एक डिसिप्लिन

0: डाइट नहीं लेंगे तब तक आप कोई भी मेडिसिन कहीं से भी ले लीजिए, वो आपको असर नहीं दिखा पाएगी, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन ही हो।
1: तो इनके प्रश्न का जवाब जहां तक समझ में आता है वो यही है यशपाल जी, कि सभी थेरेपीज हैं अलग अलग, जैसे मैडम ने बताया है कि यहाँ पे मेडिसिन ज्यादा हैं, आपका नेचुरल चीजों पर ज्यादा जोर है, लेकिन वो बात फिर वही है कि जो फॉलो करता है वो किस तरह से कर रहा है उसको फॉलो, और कितने फैक्टर्स को इंक्लूड किया जा रहा है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देवदत्त जी हमें लिख रहे हैं कि आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम, मेरी कफ प्रकृति है और मुझे क्या क्या ज्यादा और क्या कम खाना चाहिए ताकि मैं बैलेंस रह सकूं, तो ये भी कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक उस पे कफ प्रकृति।
0: कफ प्रवृत्ति का मतलब यही है कि वात पित्त और कफ, देखिए तीन प्रकृति हैं। यदि आपका कफ बिगड़ा है तो आपको सबसे ज्यादा तो ये ध्यान रखना है कि आप दूध और दूध से बनी चीजें ना लें। दूसरी चीज है कि आपको, क्योंकि आपके शरीर में कफ प्रवृत्ति का मतलब है कि आपके शरीर में ठंडक बहुत ज्यादा है, तो आप जो भी आहार लेंगे वो इस तरीके से डिजाइन होगा जिसमें जो भी आप चीज खाएंगे उसकी गर्म तासीर होगी, तो आपको अपनी डाइट उस अकॉर्डिंग प्लान करनी पड़ेगी कि गर्म तासीर की चीजें लें। दूसरी चीज है कफ प्रवृत्ति वाले लोगों को हमेशा बलगम बनना या बार बार छींके आना या सिर भारी रहना ऐसा रहता है, तो नाक में तेल दो दो तीन तीन बूंद नाक में तेल डालें रोज रात को सोने से पहले, और ये जो आपकी आंखें हैं उसके नीचे हमारे साइनस ग्लैंड्स होते हैं, तो यहां पर आप ऑयल से मसाज करें। उसके बाद आप लोकल स्टीम ले सकते हैं या फेस पर आप गर्म टॉवल रख सकते हैं, उससे आप थोड़ा सा बेटर फील करेंगे
1: जी।
0: बाकी थोड़ा सा जब हम पेशेंट से मिलते हैं तो हम उसको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाते हैं
1: जी। तो आप भी अगर पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो जैसे आप बार बार कह रही हैं, डॉक्टर शालू बार बार कह रही हैं कि ऐसे सुन के नहीं किया जा सकता है, आपकी जो एक एक चीज को जानेंगे अच्छे से फिर बताया जा सकता है, पर आपने काफी ब्रॉडली बताया कि कफ प्रकृति है तो इनको क्या तासीर खाना चाहिए। एक श्रोता वेट कर रहे हैं हमारे फोन लाइन पर। हेलो,
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार
2: अमीन भाई, रेडियो वाला।
1: हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, आप अच्छे हैं?
2: जी मैं बैरियस से हूँ।
1: चलिए बहुत बढ़िया, आप प्रश्न करें।
2: आप भी अच्छे होंगे।
1: बस
2: जी मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज है, क्या इस पद्धति में डायबिटीज के बारे में भी कुछ हमें बताएं आप?
0: देखिए जो डायबिटीज है वो तो बिल्कुल लाइफस्टाइल डिजीज है, वो बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाता है और बहुत सारे लोगों का रिवर्स भी हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा डिसिप्लिन वे में अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। प्लस ये देखिए पैनक्रियास का इंसुलिन प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी जो है उसको हमें बेटर करना होता है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में हमारे पास कुछ थेरेपीज होती हैं जैसे पैनक्रियास पैक है, गर्म ठंडा कटी स्नान है, पेट की गर्म ठंडी लपेट है, पैनक्रियास मसाज है, पैनक्रियास बस्ती हम कराते हैं। प्लस इसके साथ हम जब एक अच्छी डाइट देते हैं तो बिलीव मी डायबिटीज ऐसी बीमारी ही नहीं है जिसे लोग 20-20 25-25 साल ढोते हैं, बिल्कुल ही अगर आप बिल्कुल भी अगर आप फॉलो नहीं करते। देखिए हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम लोग एक बीमारी को लेके आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, जी मुझे तो 20 साल से डायबिटीज है, मुझे 15 साल से थायराइड है, तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप डायबिटीज की मेडिसिन कब तक खाएंगे, क्या जीवन भर इसे खाना जरूरी है? तो यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा के संपर्क में आए या आपको कभी मौका मिले प्राकृतिक चिकित्सा की थेरेपीज लेने का तो आप जरूर लीजिए, और अपने आप को 2 महीने का समय दीजिए, जिसको इंसुलिन भी लगता है वो भी बहुत इजीली रिवर्सिबल है, आप बहुत इजीली बिना मेडिसिन के अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत केसेस हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने योग प्राणायाम प्राकृतिक चिकित्सा करके डायबिटीज की मेडिसिन भी छोड़ दी है, इंसुलिन भी रिड्यूस खत्म हो गया और उनकी लाइफ से डायबिटीज ही खत्म हो गई है।
1: तो एक और श्रोता फोन पर वेट कर रहे हैं। हेलो जी।
3: हाँ जितेंद्र जयपुर से।
1: जी जितेंद्र जी बताएं।
3: अच्छा जैसे अभी हमने मैडम को सुना तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा शरीर वात में है या कफ में है या शरीर हमारा कौन सा शरीर, कैसे जान सकते हैं कि हम किस में हैं? दूसरा प्रश्न है कि मैडम इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा नेचुरोपैथी में?
0: देखिए एक जनरल तरीका है वात पित्त और कफ को समझने का कि जो रोग नाभि के नीचे से अंगों के हैं, अगर आपको वहां का कोई रोग है तो आपको वात है, यदि नाभि से गले तक के रोग कोई भी रोग है तो पित्त है, और गले से ऊपर के रोग हैं तो कफ है। ये क्लेमन लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा रोग है। दूसरी चीज है कि प्रिकॉशन का मतलब क्या है, जो हमारी प्रकृति है ना, समय से सोना

0: ना समय से उठना जो और नियम से भोजन करना। नंबर थ्री, वक्त बेवक्त बार बार बार बार कुछ नहीं खाना। नंबर फोर, फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना, यानी कि किसी भी चीज के साथ हम कुछ भी खाई जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। जैसा हम कहते हैं ना कि पशु के आगे भी अगर आप फल कुछ भोजन रख देते हैं तो पशु भी मुंह फेर लेता है, लेकिन मनुष्य का हाल क्या है, जो मर्जी हमें ऑफर करता है हम खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें कोई देख नहीं रहा है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि शरीर के भी नियम हैं, जैसे एक ऑफिस में नियम होते हैं ना, आप ऑफिस समय से जाते हैं समय से आते हैं, ऐसे बॉडी में हर ऑर्गन की एक प्रतिक्रिया है। तो रात देर रात मोबाइल देखना, मोबाइल पे कुछ भी देखते रहने से भी क्या होता है कि हमारे जो हॉर्मोन्स हमारे सिक्रीशन होने हैं, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स और वो सिक्रीट होने हैं, वो नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड उस वक्त भी बिजी है। तो यदि आप बिल्कुल प्राकृतिक नियमों के साथ चलेंगे तो आप जानेंगे कि आपको शरीर में रोग लगेगा ही नहीं। करके देखिए, यू विल फील द मैजिक ऑफ नेचर।
1: चलिए, बहुत अच्छी बातें आप यहाँ बता रही हैं और हमारे श्रोता निश्चित रूप से बहुत लाभ लेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे आज के कार्यक्रम को तो डॉक्टर शालू गुप्ता की बातें सुनिए, और बहुत सिंपल लेकिन बहुत कारगर चीजें आप बता रही हैं, और अगर इनको हम सच में फॉलो करें तो मुझे लगता है कि
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: काफी हद तक
0: होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल
1: जी। तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, क्योंकि संगीत सुनना भी एक तरह से मन को खुश करता है
0: ना,
1: तो इट ऑल्सो हील्स। तो हम इस कार्यक्रम में ये सुख भी अपने श्रोताओं को देते चलते हैं। तो एक प्यारा सा गीत सुनेंगे और फिर लौट कर आएंगे। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे साथ हैं, तो हम जरूर डॉक्टर साहब से ये प्रश्न पूछते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज का रेडियो डॉक्टर समर्पित है नेचुरोपैथी को, प्राकृतिक चिकित्सा को। और आज हम बात कर रहे हैं इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्यों किए जाते हैं, नेचुरोपैथी का क्या रोल हो सकता है हमारी बीमारी के उपचार में। और बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर शालू गुप्ता ने आपके प्रश्नों के अभी तक जवाब दिए। आधा समय निकल चुका है लेकिन आधा बाकी है, तो जरूर आपके और प्रश्नों को हम शामिल करते रहेंगे, ये जरूर बीच बीच में जानते रहेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, एक फोन पे भी वेट कर रहे हैं, मैसेजेस की भी लाइन लगी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे सभी के प्रश्नों का जवाब आज दे सकें। देखिए कितना हम सफल हो पाते हैं। तो आइए पहले फोन कॉल लें कि मैसेज ले लें,
1: जैसे
0: ठीक है फोन ले लेते, मैसेजेस फिर हम ले लेंगे। जी आइए आपका सवाल लेते हैं। हेलो
2: बहन जी नमस्ते।
0: जी जी बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत।
2: जी गजराज बोल रहा हूँ, नई दिल्ली से।
0: जी जी गजराज जी प्रश्न करें।
2: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ था मेरे जो ना पिछले सितंबर में जो ना ब्रेन में स्ट्रोक आ गया था, तो मेरी जो ना आंखों की क्लियरिटी खत्म हो गई है, लेकिन आंखों में जो ना अब मेरे कोई नुक्स नहीं है। मैंने चेक कराई है आंखें अपनी, लेकिन आंखों में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे को देखने में दिक्कत हो गई है, तो क्या ये इससे ठीक हो जाएंगी मेरी ये दिमाग की नस?
1: देखिए जो आपको आईज की प्रॉब्लम है, जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद आई है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आहार को अच्छा करना पड़ेगा। अपनी डाइट में, न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा बेटरमेंट करनी पड़ेगी कि आपके शरीर को इतना पोषण मिले कि आपके जो ब्रेन की नसें हैं वो थोड़ी सी सक्रिय हो जाएं और हेल्दी हो जाएं, पुष्ट हो जाएं। जैसे जैसे ब्रेन की नर्व्स बेटर होंगी वैसे वैसे आंखों की रोशनी आएगी। तो इसके लिए मेजरली आपको कोशिश कीजिए, प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाइए, दालें बढ़ाइए, और जो इंडियन वेजिटेबल, इंडियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है सबसे ज्यादा सोया में है, चाप में है और पनीर है, इन सब चीजों को थोड़ा सा बढ़ाइए। दूसरी चीज ये है कि गर्म पानी में पैर रखिए, उसको रखने से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बेटर होता है और आपके ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो बहुत हद तक रिलैक्स होती हैं। थर्डली नाक में तेल डालिए, दो दो तीन तीन बूंद, उससे भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा।
0: जी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता प्रश्न है मैंने देखा अभी, तो मैंने कहा मैं अभी पूछ लेती हूँ। अमित खान लिख रहे हैं बागपत यूपी से, मेरी नजर बहुत कमजोर हो गई है, आपसे मैं इनका उपाय पूछना चाहता हूँ और मुझे क्या खाना चाहिए ताकि मेरी नजर तेज हो जाए। तो लगभग
1: अमित जी आपको आई एम नॉट श्योर कि आप क्या करते हैं और कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है और आपकी नजर कितनी कमजोर है, लेकिन जनरली जिनकी आई साइड वीक हो गई है उन लोगों को वो त्रिफला के पानी से आई वॉश कीजिए, उससे आपकी नर्व्स में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। आधा चम्मच त्रिफला आप रात भर भिगा दीजिए पानी में और सुबह उसे किसी महीन से कपड़े में छान लीजिए और फिर किसी आई वॉश कप से या उससे अपनी आंखों को वॉश कीजिए, 20-20, 25-25 बार ब्लिंक कीजिए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सेकेंडली अपनी डाइट में नींबू बढ़ाइए, एक या दो नींबू रोज खाइए। थर्डली आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में आंवला भी जरूर हो, आंवला और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो पपीता है, सेब है, अनार है, इनको आप डाइट में बढ़ाइए। और अल्टीमेटली वही जैसे मैंने कहा कि अपनी लाइफस्टाइल को आपको ठीक करना ही पड़ेगा, तभी आपके जो डेड ऑर्गन्स हैं या जो ऑर्गन्स वीक हो गए हैं वो रेजुविनेट हो जाएंगे।
0: जी बालू राजड़ बाड़मेर से लिख रहे हैं, खम्मा गढ़ी शालनी बाईसा, मेरी पित्त प्रवृत्ति है और इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। तो अभी हमने कफ वाली प्रवृत्ति की बात की थी, तो इनको भी बता दीजिए।
1: देखिए पित्त प्रवृत्ति का मतलब यही है कि आपके शरीर में बहुत गर्मी है, तो आपको ध्यान रखना है पित्त में। आई एम नॉट श्योर आपको क्या है कि आपको एसिड बनता है या आपको आपकी छाती में जलन होती है, आपको बार बार उल्टी आती है, जनरली पित्त में ऐसा ही होता है या आपको जी मिचलाता है, बेचैनी रहती है। तो आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आप ठंडी तासीर की चीजें खाएं जिसमें नारियल पानी है, गोंद कतीरा शायद आपको पता होगा, ये एक ड्राई फ्रूट की तरह ही होता है, इसको भिगाते हैं 6-7 घंटे भिगाते हैं और ये फूल जाता है, फिर इसको छान कर किसी ड्रिंक में डालकर पीते हैं, जैसे आपने नारियल पानी में पी लिया, किसी और नॉर्मल नींबू पानी में पी लिया, पर नींबू कम पियेंगे जितने भी पित्त प्रवृत्ति के लोग हैं। और फलाहार आप कर सकते हैं, आपको पित्त से बिल्कुल छुटकारा पाना है तो पित्त के लिए आप दो दो तीन तीन दिन फलाहार भी कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि रात के समय दालें ना खाएं, दिन में भी सिर्फ मूंग छिलका दाल या साबुत मूंग ऐसी दालें खाएं। पेट पे ठंडा टॉवल रखें 15-20 मिनट रोज। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पेट

0: रोज साफ हो, विद इन 10-15 दिन आपको काफी अच्छा रिलीफ मिल जाएगा।
1: जी, काफी विस्तार से आपने बताया और काफी ऐसी चीजें हैं जिसको इजीली फॉलो किया जा सकता है।
0: जी,
1: ये हमें प्रश्न भेज रहे हैं, लिखने वाले हैं, नाम तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, पर प्रश्न इनका यह है कि क्या डिप्रेशन और एंजाइटी का भी उपचार है इसमें नेचुरोपैथी?
0: देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे पहला उपचार तो इंसान के अपने पास है, ये हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज है कि यदि किसी सदमे की वजह से या कोई बहुत टेंशन है, किसी भी वजह से आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है, तो इलाज प्राकृतिक चिकित्सा में जरूर है। मिट्टी की पट्टी बहुत काम करती है, ठंडा कटी स्नान जो हाइड्रोथेरेपी है वो प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठंडे पानी में सिर्फ बैठना, आप लोग शायद प्राकृतिक चिकित्सा को इसलिए भी शायद लगता है कि सीरियस आप लोग नहीं होते हैं, क्योंकि आपको लगता है क्या सिर्फ पानी में बैठने से कुछ हो जाएगा। प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि आपने वैसे भी देखा होगा, जब आप ठंडे पानी से स्नान लेते हैं बॉडी कितनी रिलैक्स हो जाती है, तो जब हम ठंडे पानी में बैठते हैं तो भी डिप्रेशन एंजाइटी में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक अच्छा माहौल, एक बिल्कुल सूदनिंग म्यूजिक जैसे ओम, जिसमें हमारी ब्रेन की वेव्स बिल्कुल सटल रहती हैं। उसके बाद बिल्कुल सात्विक आहार। उसके बाद एक और इलाज है जिसको हम बोलते हैं शिरोधारा। शिरोधारा में कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स से आपके जो क्राउन चक्र है वहां पर 40 मिनट्स उस ऑयल को डाला जाता है, जिससे आपकी जो पीनियल ग्लैंड की केमिकल रिलीज जो वो करता है उस वो हमेशा बेटर हो जाती है, तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलने में बहुत आसानी होती है।
1: एक श्रोता हमारे वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो,
2: नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं किशन चंद बोल रहा हूँ। मैडम नमस्कार आपको।
1: नमस्कार।
2: मेरी प्रॉब्लम है कि मैं एक बार एडमिट हुआ था एलोपैथिक के इलाज के लिए करीबन एक महीने के लिए। उसके बाद मेरा चलना फिरना काफी खराब हो गया था, अभी प्रैक्टिस करके ठीक किया है और आंखों की रोशनी उसी दवाइयों के दौरान चल ली गई एलोपैथिक के ट्रीटमेंट के, बस लाइट जलती मुझसे दिखती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये खाने के टाइम मेरा खाना जो है आगे जाके रुक जाता है फूड पाइप में, जिसके बाद दो वाले एंडोस्कोपी कराई है लेकिन अभी वो ठीक से नहीं है। मेरे को लिक्विड खाना पड़ता है, मतलब पतला खाना था, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे स्ट्रोक भी हो चुका है 2 साल पहले, उससे पहले कोरोना भी हो चुका है।
0: आपकी उम्र क्या है?
2: मेरी उम्र 77 है।
0: अच्छा, देखिए इस केस में क्योंकि आप दूर हैं, मैं बहुत कुछ तो नहीं सजेस्ट करना चाहूंगी, लेकिन इसके लिए आप खाने के लिए सबसे पहले तो पेट पे ठंडा टॉवल रखना शुरू कीजिए 15 से 20 मिनट। इससे जो पेट की गर्मी होती है वो शांत होती है और आपको खाना पचने में मदद होती है। दूसरी चीज है, आपको थोड़ा सा तेल मालिश का सहारा यहाँ पे लेना पड़ेगा कि आप सनबाथ भी लें और तेल मालिश भी कराएं, कि कहीं पर धूप में शरीर की तेल से मालिश कराएं 20 से 25 मिनट, और फिर आधा पौना घंटा धूप में ही लेटे रहें और उसके बाद स्नान लें। इससे शरीर की मांसपेशियां थोड़ी सी स्ट्रांग होंगी और आपकी बॉडी को बेटर होने में हेल्प मिलेगी। बाकी मैं बहुत कुछ आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फोन पर सुनकर ही इस चीज को फॉलो करें। तो आप किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाकर उनसे सलाह लीजिए।
1: जी, पर मदद मिल सकती
0: है? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। हाँ जी जी।
1: उमेश कुमार जी हमें ख्याला से लिख रहे हैं कि इनको जानकारी बहुत अच्छी लग रही है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे ये लिख रहे हैं कि जो बरसात का मौसम होता है तो इसमें कई बार फोड़े फुंसी हो जाती है।
0: हाँ,
1: तो क्या उसमें भी मदद मिल सकती है?
0: देखिए, हमारा देश ना ऋतुचर्या, हम एक बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ाते हैं ऋतुचर्या और दिनचर्या। हम लोगों ने तो ये सोचा है कि जो मौसम हो जो मर्जी हो हमारा खान पान सेम रहेगा, लेकिन हम ऐसे देश में हैं जहां पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे ऋतु बदलेगी तो हमारा भोजन बदलेगा। जैसे सावन के सोमवार का व्रत रखने का चलन इसीलिए है कि आप एटलीस्ट सावन में बारिश के मौसम में एक दिन फलाहार करें, लेकिन हम फलाहार के नाम पर भी शाम को पूड़ी और पकौड़े खा लेते हैं, तो वो व्रत का पर्पस भी खराब हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नंबर वन, सावन में कभी भी दूध से बनी चीजें नहीं खाएं, क्योंकि सावन में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, तो गायें भैंसे भी वही खाती हैं और जो दूध होता है वो भी टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए सावन में थोड़ा सा दूध चढ़ाने का भी नियम है कि आप दूध चढ़ाएं ताकि हम घर में उसका कंजम्पशन कम करें, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये ध्यान रखना है कि बारिश का जब मौसम होता है तो उसमें दही और छाछ को

0: बंद कर दें, उन दिनों कड़ी, दही, छाछ और जो साबुत दालें हैं, जैसे साबुत उड़द है, व्हाइट वाले चने हैं, ये छोले हैं, उन्हें घर में ना बनाएं। आपको लाइट फूड खाना है जो इजीली पच सके, और कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा फलहार और रसाहार पे रहें। फ्रूट्स और लिक्विड्स जितना लेंगे उतना ज्यादा आप सावन में हर बीमारी से बचे रहेंगे रेनी सीजन में। और दिन में जब आप 3 बार पका हुआ खाते हैं, कोशिश कीजिए 2 कुक्ड मील्स खाइए और बाकी पूरा दिन रॉ लीजिए, जो भी कच्चा आहार है उसको लीजिए।
1: अच्छा,
0: इससे होपफुली आपको कभी भी फोड़े फुंसियां नहीं होंगी।
1: अच्छा, एक ये प्रश्न अलग तरह का आया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनीता तेजवानी जी पूछ रही हैं कि क्या नेचुरोपैथी जेनेटिक डिजीजेस पर काम करती है?
0: अनीता जी, ये जेनेटिक डिजीजेस पर नेचुरोपैथी काम करती है, लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हमें शायद बात करनी पड़ेगी कि आप कौन से डिजीज के बारे में बात कर रही हैं। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो लोग डायबिटीज को भी एक जेनेटिक डिजीज समझते हैं, लेकिन हमारे पास तो बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें पेरेंट्स को डायबिटीज होती है लेकिन बच्चों को डायबिटीज ठीक हो जाती है, क्योंकि हम सेम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात कर रही हैं जो जेनेटिक हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो डिजीजेस लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होते उन्हें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है।
1: जी, हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
2: जी, नमस्कार।
1: जी जी जी, नमस्कार
2: जी, गौतम बोल रहा हूं।
1: जी गौतम जी, प्रश्न कर रहे हैं,
2: डायबिटिक न्यूरोपैथी का भी इलाज चिकित्सा में है क्या? नहीं,
0: बिल्कुल है जी, बिल्कुल है।
1: तो मनोहर लाल गांधी जी चाणक्य चौक गाजियाबाद से पूछना चाह रहे हैं कि किसी महिला में रक्त की कमी के कारण अगर पैरों में सूजन हो तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा और योग से ये सही हो सकता है? और इनका एक प्रश्न ये भी है कि क्या आजकल यूट्यूब और टीवी पे जैसे देखकर हम लोग योग और बाकी चीजें करते हैं, वो सही होता है क्या?
0: देखिए, आप सबसे पहले तो जितने भी लोग सवाल पूछते हैं, आप ये समझिए कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कभी नुकसान नहीं है। आप कुछ भी, कोई भी आपको बीमारी है, प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा आपको ठीक होने में मदद करेगी। अब किस लेवल तक मदद करेगी वो डिपेंड करता है कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हैं और आप क्या डाइट फॉलो करते हैं और आप कितना प्राकृतिक चिकित्सा की जो थेरेपीज हैं वो लेते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा आपको हर चीज में मदद करती है। अब अगर यदि किसी महिला का रक्त कम है जिसकी वजह से पैरों में सूजन है, तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में आपको ऐसा इलाज देते हैं और ऐसा आहार देते हैं जिससे आपका रक्त बढ़ेगा और पैरों में सूजन चली जाएगी। तो उससे उसमें इलाज है ही है।
1: तो हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आए हैं तो उनको फटाफट शामिल करेंगे, एक छोटा सा म्यूजिक सुनेंगे और फिर लौट कर आते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, आज बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स के बारे में। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं योग एवं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट एंड प्रैक्टिशनर डॉक्टर शालू गुप्ता। तो सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर अपने दोस्त शालिनी मित्तल के साथ।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा पे, और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं डॉक्टर साहब। फोन पर भी हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, आप रेडियो डॉक्टर में प्रश्न कर लें, अपना नाम बता के।
1: मैं जयपुर से विजय बोल रहा हूँ मैम
0: जी। विजय,
1: और मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें डाइट में ऐसा किस चीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए कि हमारा पाचन क्रिया या फिर हमारा कोई भी रोग या बीमारी।
0: जी समझ गए, वो कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, अभी आपने कुछ तो बताए भी थे शायद।
2: हाँ जी, देखिए बहुत बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, बट मैं आपको कुछ यहाँ बता देती हूँ,
0: कॉमन वाले बता।
2: हाँ जी हाँ जी, देखिए कुछ चीजें हैं जैसे फल के साथ, खाने के साथ फल नहीं, खाने के साथ जल नहीं, कि खाने के साथ हमें फल कभी नहीं खाते हैं। फ्रूट्स शुड बी टेकन एज एन इंडिविजुअल डाइट। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भोजन है वो चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर वन फ्रूट्स, नंबर टू सैलेड, नंबर थ्री नट्स, और नंबर फोर कुक्ड फूड। तो ये चार चीजें हमारी डाइट में रोज होंगी। अब फ्रूट्स जो हैं वो हमारी डाइट का पार्ट हैं। हम ये सोचते हैं ना कभी फल खाया कभी नहीं खाया, वो नहीं होगा, नहीं चलेगा अगर आपको एक अच्छी हेल्दी बॉडी चाहिए। तो फ्रूट अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, मस्ट है। लेकिन अगर आपने फल को खाने के साथ खा लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो फल और खाने का कॉम्बिनेशन गलत है। नंबर टू, कुछ बादाम, अखरोट, कुछ भी नट्स जो रात भर भीगे हों उन्हें भी आपको जरूर खाना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए एक मल्टीविटामिन का काम करते हैं। आप बाहर से मल्टीविटामिन खाते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। हमारी डाइट में खाइए मल्टीविटामिन, मतलब रात को नट्स कुछ भिगा दीजिए उसको खाइए। अब फ्रूट्स के साथ नट्स भी नहीं खाते, इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन। तो आपको फल हमेशा अकेले खाना है। नंबर टू, सैलेड्स आप खा सकते हैं। जब आप सैलेड खाएंगे या स्प्राउट्स खाएंगे उसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। नंबर थ्री, आप भोजन करेंगे, भोजन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सब्जी और दाल इकट्ठी खाते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि एक बार में एक ही तरह की सब्जी खाइए या दाल खाइए। जब आप अपनी राजसिक प्लेट लगाते हैं ना, जिसमें आपने 10 तरह की वैरायटी खा ली, तो हमारी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है कि किसको कैसे पचाए। तो एक सादा भोजन कीजिए जिसमें एक सब्जी, खूब सारा सैलेड, रोटी या चावल और साथ में दही, जैसे भी आपका जो शेड्यूल है। उसके बाद ये कोशिश कीजिए शाम को 5 बजे के बाद आपने फल नहीं खाना है, क्योंकि शाम को जो सूर्य तत्व है वो कम हो जाता है और चंद्र तत्व पीक पर हो जाता है। तो 5 बजे के बाद आप फल और सलाद नहीं खाएंगे। सलाद में भी ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं खाना, सलाद में खीरा दिन में, हीरा रात में पेड़ा। तो खीरा और मूली जैसी चीजें रात को नहीं खाते हैं। आप टमाटर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, वो आपको सलाद में खाना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिन में आप 2 कुक्ड मील्स लीजिए, और हर मील के साथ आपको एक प्लेट सलाद जरूर खाना है। और जो आप फ्रूट खाएंगे वो आप अलग से खाएंगे, और आपके भोजन में इस सब चीजों के साथ वो ऐड हो सकती है नट्स, मतलब ड्राई फ्रूट ऐड हो सकता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा समय का अभाव है।
0: जी जी, तो मैं कहती हूँ बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन काफी अच्छी जानकारी है। और एक चीज और बताइए, जो आपने बताया सलाद खाना है खाने के साथ, तो वो खाने से पहले ही साथ में या बाद में
2: उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलेड को जनरली हम कहते हैं कि आप खाने से पहले खाओ ताकि आपका पेट आधा भर जाए, आप खाना कम खाएं। सिर्फ यही लॉजिक है कि आप पहले खाएं ताकि भोजन कम करें, इसीलिए।
0: लेकिन वैसे वो कभी भी खा,
2: वैसे आप कभी भी खा सकते हैं।
0: पर एक ये प्रश्न हमारे पास आया है नेहा जी का, जयपुर से लिख रही है। ये कह रही है कि मैंगो जो है, हम लोग क्या रोज हैबिट है कि हम खाने के बाद डिनर पे मैंगो खाते हैं, तो क्या ये सही है? तो आप बताइए
2: नेहा जी। सिर्फ आम ही एक ऐसा फल है जिसे भोजन के साथ खाया जा सकता है, क्योंकि आम की तासीर थोड़ी गर्म मानी जाती है, तो इसे हम

0: रात में भी खा सकते हैं और खाने के बाद भी खा सकते हैं। आम के अलावा कोई भी ऐसा फल नहीं है जो आप खाने के साथ खा सकते हैं, तो दिस इज राइट,
1: इसमें कोई डरने की बात नहीं,
0: इसमें कोई बात।
1: और एक इन्होंने नी जॉइंट पेन के बारे में भी जानना चाहे तो कुछ बताइए।
0: मैं आपको ना बहुत बेसिक सा होम रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि आजकल घुटनों की तकलीफ जो भी लोग 40-45 साल कवर करते हैं मोस्टली सबको है, तो घुटनों की तकलीफ के लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। एक तो घुटने की मोबिलिटी को मेंटेन रखें, ये नहीं कि अगर घुटने में दर्द हो गया तो आप बैठ जाएं कि आपने चलना बंद कर दिया, नीचे बैठना बंद कर दिया, बट यस यू नीड टू ऑब्जर्व योर बॉडी। दूसरी चीज है एक हलवा बनाते हैं देसी तरीके से हलवा, जिसमें कढ़ाई में आपने सरसों का तेल डाला, 2 चम्मच मेथी दाना और अजवाइन डाला, फिर मीठा सोडा हल्दी और नमक डाल दिया आधा आधा चम्मच, फिर गुड़ और पानी डाल दिया जिससे वो चाशनी बन जाती है, और ऊपर से आपने आटा मिक्स कर दिया तो एक हलवा बन जाता है। इसको सहता सहता सा निवाया निवाया आप अपने घुटने के आगे पीछे लगाएं, ये एक पेस्ट की तरह बन जाता है, जो घुटने का जितना भी हमारा जो एकिंग मसल्स है हमारी घुटने में उनको बड़ा रिलैक्सेशन देता है, और आप थोड़ा सा लंबा टाइम इससे चल सकते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास मस्टर्ड पैक भी होता है, मस्टर्ड पैक जो खल होती है मस्टर्ड की, उसको आप थोड़ा सा भिगाएं पानी में, उसका पेस्ट बनाएं और घुटने के चारों तरफ लगाएं। उसको अगर आप 40-45 दिन लगाएंगे आपको अपने घुटने में बहुत ही अच्छा चेंज देखेगा दर्द में। उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा में गर्म ठंडी पट्टी भी होती है, जिसमें ठंडी पट्टी सूती पट्टी पहले नीचे बांधी जाती है और ऊपर गर्म पट्टी बांधी जाती है ऊन की। इसको 40 मिनट तक घुटने पे बांधने से जो घुटने में आसपास फैट जमा हो जाता है वो भी निकल जाता है और दर्द में काफी रिलीफ आता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गर्म पानी में पैर रखें जिसमें आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, 15 मिनट के लिए पानी में पैर रखें और 3 से 4 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें और मग से वो घुटने पे पानी डालते रहें। इससे भी आपको घुटने में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर आप रिलीजियसली कर रहे हैं तो आपको घुटनों में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा।
1: मेरा एक प्रश्न है, मेरे एक परिचित हैं, उनको काफी पेन है, जैसे इससे रिलेटेड ही है नी पेन है, और उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप नी ट्रांसप्लांट करा लें, तो क्या ऐसी कंडीशन में भी जो आपने अभी बताई थेरेपीज वर्क करेंगी और वो बच सकती हैं ट्रांसप्लांट?
0: देखो जनरली आई शुड नॉट से, लेकिन एलोपैथी में शायद बहुत जल्दी हम ऑपरेशंस पर आ जाते हैं, पर प्राकृतिक चिकित्सा का काम होता है सर्जरीज को बचाना। तो ऐसे केसेस में एक और थेरेपी होती है जिसे हम बोलते हैं जानू बस्ती। ये आयुर्वेदा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें घुटने पर एक मेडिकेटेड ऑयल भरा जाता है, तो उससे नी ट्रांसप्लांट बच सकता है, बहुत हद तक हमने लोगों का बचाया है।
1: हाँ जी, उम्मीद है कि
0: बिल्कुल उम्मीद है, अगर आप अगली स्टेजेस पे पकड़ लेंगे, अगर आप बिल्कुल 20 साल बाद आएंगे तो देखिए मुश्किल है किसी के लिए भी।
1: जी जी, हाँ बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि किस तरह से उसको पहचानना है और करना है। अनूप कुमार रांची से लिख रहे हैं कि इरेगुलर स्लीप पैटर्न है और बैकबोन में दर्द है, तो नेचुरोपैथी करनी चाहिए?
0: बिल्कुल करनी चाहिए। इरेगुलर स्लीप पैटर्न है तो इसके लिए तो देखिए बहुत सारी चीजें, शायद हमारी अपनी ही कमी होती है, जो हम सुधार लें तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे।
1: जी, जी, जी।
0: तो जो हम लेट नाइट तक फोन देखते हैं, सारा दिन हम फोन में हैं, या हमारा दिमाग जो मल्टीटास्किंग सारा दिन करता है, तो हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा, आजकल जो मीडिया है हम लोग उसको देखकर कुछ भी विचार दिमाग में बिठा लेते हैं, जिससे इरेगुलर स्लीप है। सेकेंडली अगर आपको कमर दर्द की वजह से इरेगुलर स्लीप है तो कमर दर्द का इलाज बहुत ईजिली पॉसिबल है। बहुत ज्यादा कमर दर्द है तो कटी बस्ती इसका इलाज है, नहीं तो कमर की मालिश है, गर्म ठंडा कमर का सेक है, और कुछ ऐसे तेल भी आते हैं, कुछ ऐसे पत्ते हमारी प्रकृति में मौजूद हैं जिन्हें हम गर्म करके अफेक्टेड पार्ट पर लगाते हैं और 40-45 मिनट तक अगर हम लगाए रखते हैं तो भी वो दर्द को खींच लेते हैं। तो वो आपको स्पेसिफिक हमसे मिलकर या किसी से भी मिलकर बताना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितने समय से प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम गाइड कर देंगे।
1: अच्छा, ये भी बताइए डॉक्टर शालू कि जिस तरह से आपने बताया कि कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत लाभ देते हैं, कितना ड्यूरेशन, कितना टाइम लगता है इसमें?
0: वो देखिए वो पेशेंट को देखकर हम बताते हैं, लेकिन जनरली 10 से 20 दिन। अच्छा। हम इतना बुलाते हैं, और बाकी देखिए हमारा पर्पस ये है कि आपको सारी उम्र डॉक्टर के पास नहीं रहना, हम अपने डॉक्टर स्वयं हैं, तो हम आपकी बॉडी को बहुत हद तक रेजुविनेट कर देते हैं और फिर हम आपको होमवर्क देते हैं। यू नीड टू फॉलो थिंग्स एट होम। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे और चीजें जो बताई जाती हैं उसे फॉलो करेंगे, तो आप चीजों को धीरे धीरे वो ठीक हो जाती हैं।
1: जी जी, आलोका लिख रही है नोएडा से कि इनकी बेटी है 22 साल की और वो थायराइड है उनको 4 सालों से, तो नेचुरोपैथी में थायराइड का क्योर है?
0: आलोका जी, नेचुरोपैथी में थायराइड का क्योर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मेडिसिन छूट जाती हैं, बहुत

0: से ऐसे लोग हैं जो बहुत मिनिमल डोसेज पे चलते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। जैसे धनिया पानी भी हम पिलाते हैं, और इसके लिए कुछ डिसिप्लिन आपको रखने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि उसको हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, तो मैं उसी बेसिस पर आपको कुछ बता पाऊंगी। तो आपके मैसेज में ऐसा नहीं है तो शायद हम कभी पर्सनल आप किसी से बात करेंगे जाकर, तो आपको गाइड कर देंगे,
1: पता चल जाएगा। हाँ जी। तरुण कुमार अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं कि मेरी उम्र है 43 ईयर्स और मुझे बहुत छींकें आती हैं और खासतौर पर इस मौसम में, और एलर्जी जैसा लगता है, तो क्या नेचुरोपैथी शुरू करने से मुझे छींकों में कंट्रोल हो पाएगा?
0: बिल्कुल होगा तरुण जी। देखिए, इस मौसम में जिन लोगों को कंटिन्यूस स्नीजिंग होती है, ये हेमियर एलर्जी है क्योंकि चेंज ऑफ सीजन पे हो जाती है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक तो नाक में तेल डालना शुरू कीजिए, दो दो तीन तीन बूंद दिन में दो बार। दूसरी चीज है, आपको अपनी छाती की सिकाई करनी है, हल्का सा तेल मालिश करके आप छाती की सिकाई कीजिए। तीसरी चीज है, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक, उसको उबाल के उसकी चाय पीजिए। प्लेन पानी ही पीना है वो, मतलब लहसुन और अदरक का, उससे एलर्जी लेवल्स काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। चौथी चीज है, अपनी मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दीजिए फॉर सम टाइम, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी। और डाइट जो मैंने आपको बताया, जो डाइट का शेड्यूल है उसको फॉलो करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डाइट को फॉलो करते हैं तभी बॉडी की इम्यूनिटी बेटर होगी और आप किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं
1: जी। और एक हमें डॉक्टर अभय लिख रहे हैं न्यू दिल्ली से ही कि ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, तो इसमें भी क्या आप एडवाइस करेंगे?
0: डॉक्टर अजय, ब्रोंकाइटिस के काफी पेशेंट्स पे हमने काम किया है। जनरली अगर अक्यूट है या क्रॉनिक भी है तो इसमें हृदय बस्ती भी बहुत अच्छा काम करती है। बाकी देखिए, गर्म ठंडी छाती लपेट है, नस्यम है और ट्रंक बाथ है, काफी सारी चीजें हेल्प करती हैं। बट ऐसा, जब भी आप प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे तो आपको बिना दवा के बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपनी बॉडी में। तो मेरी सलाह यही है, आप जरूर करिए
1: जी। और बिंदु रोहिणी से लिख रही हैं, इट इज अ वंडरफुल सेशन विद यू डॉक्टर शालू, एंड साथ ही साथ ये लिख रही हैं कि मेरी डॉटर है 15 इयर्स ओल्ड, शी हैज गॉट पिंपल्स एंड ऑयली फेस, हाउ कैन वी फाइंड रेमेडी थ्रू नेचुरोपैथी?
0: बिंदु जी, हमें सबसे पहले ना आप ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी बीमारी हमें है तो हमें उसकी जड़ को समझना है कि बीमारी क्यों है। अब क्योंकि आपकी डॉटर 15 इयर्स की है तो शायद ये मेंसुरेशन का टाइम है, और इस दौरान पिंपल्स आना बहुत ही कॉमन हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्योंकि मेंसुरेशन के समय बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की बहुत बार डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बच्चे वही खाते हैं जो वो हमेशा से खाते आ रहे हैं। तो हम वेट ग्रास जैसी चीजें या अशोका रिष्ट जैसी चीजें हम उन्हें देना शुरू करें, और थोड़ा सा आहार का ध्यान रखें
1: जी। तो आज हमने बहुत सारी बातें डॉक्टर शालू गुप्ता से नई नई समझी और सीखी, लेकिन ये है वही पुरानी बातें जो हम भूल जाते हैं और जिन्हें हमें भूलना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। उन सभी श्रोताओं को, उन सभी साथियों को, उन सभी दोस्तों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहकर ये प्रश्न किए मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर्स के बारे में। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर शालू गुप्ता को जो कि नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने समय निकाला, यहां आई हैं और बहुत अच्छी जानकारी आपने हम सब तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद शालिनी जी यहां बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे।

0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अलोरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सड़क, राजमार्ग और ऊर्जा क्षेत्र सहित 18,000 करोड़ रूपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारम्भ किया। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू, प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से सम्पन्न होगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। 19 किलोग्राम के वाणिज्य के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई, नई दरें आज से लागू। पिछले महीने वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और यह 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत, मृतकों की संख्या 2 हुई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदेव बख्तियार ओडिलोविच कल से 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, केरल में भी बारिश से संबंधित घटनाओं में 3 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, केरल और माहे में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। दिस इज योर आरजे चेतन। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब हम जीवन में अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि मेहनत का साथ कभी मत छोड़िए। जिस दिन आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, उस दिन आप जरूर सफल होने की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस मंत्र और इस सार से जुड़ी ये एक प्रेरक कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक जंगल था जहां सुनहरे पंखों वाले बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। वह पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को खाती थी, यही उसका प्रिय भोजन था। एक दिन वो भोजन की तलाश कर रही थी, तब उस चिड़िया की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति के हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स था, जिसे लेकर वो जंगल से तेजी से गुजर रहा था। उसे इतनी जल्दबाजी में देख चिड़िया को हैरानी हुई। उस चिड़िया ने व्यक्ति से पूछा कि भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? किसी परेशानी में हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। आज सुबह से ही मैं पेड़ के तनों में रहने वाले कीड़ों को इकट्ठा कर रहा था। इन्हें मैंने इस लकड़ी के बॉक्स में भरा हुआ है। इन्हें गांव के बाजार में बेचने जा रहा हूँ। इसके बदले में मुझे एक सुनहरा पंख मिलेगा। जल्दी जा रहा हूँ ताकि बाजार बंद न हो जाए। ये सुनकर चिड़िया को ख्याल आया कि उस व्यक्ति को सुनहरे पंख चाहिए और उसे खाने के लिए तने के कीड़े। एक दूसरे की आवश्यकता को पूरे करने के लिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चिड़िया ने सोचा कि क्यों न वो इसे खुद का एक पंख देकर ये बॉक्स ले ले। ऐसे में उसे भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। चिड़िया ने उस व्यक्ति से कहा कि ये बॉक्स वो उसे दे दे, इसके बदले में वो उसे एक सुनहरा पंख दे

रहेगा। वह व्यक्ति भी इस बात पर तैयार हो गया क्योंकि उसे बाजार तक नहीं जाना पड़ा। चिड़िया ने उसे अपना एक पंख दिया और बॉक्स ले लिया। सिर्फ यही नहीं, उसने उस आदमी को रोज सुनहरा पंख देने का वादा किया और बदले में कीड़े लाने के लिए राजी कर लिया। इससे चिड़िया को बिना किसी मेहनत के रोजाना कीड़े मिलने लगे। वह रोज अपना एक पंख तोड़ती और कीड़े लेकर अपनी भूख मिटा लेती। लेकिन धीरे धीरे उसे उड़ने में परेशानी होने लगी क्योंकि उसके पंख खत्म होने लगे थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके सभी पंख खत्म हो गए। वे उड़ने में भी असमर्थ हो गई। पंख न मिलने पर उस आदमी ने उसके लिए कीड़े लाना बंद कर दिया। चिड़िया लाचार हो गई थी। वह खाना तलाशने में भी न जा सकती थी। कुछ ही दिनों में चिड़िया भूख प्यास से तड़प कर मर गई। तो दोस्तों, आपको ये मैसेज तो समझ में आया ही होगा। क्या सफलता का शॉर्टकट भी होता है? कैसे? होता तो है, लेकिन फिल्मों में। इसी कारण आज हर युवा बिना मेहनत करे रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है, जिस कारण उसको सामान्य कार्य करने का कोई रुचि नहीं रहता। ज्यादा फिल्म देखने के बाद हम जिंदगी में कुछ इन चीजों की उम्मीद करते हैं। अमीर लड़की को हमेशा प्यार हो जाएगा, जो कि इकलौती होगी, पढ़ी लिखी होगी, परी की तरह सुंदर भी होगी, तो शादी के बाद में अरबपति बन जाऊंगा, कोई रियलिटी शो जीतकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा। तो वीडियो सोशल मीडिया पे डालकर न केवल दोस्तों में पॉपुलर होने के सपने, बल्कि ये उम्मीद करते हैं कुछ हफ्तों में मिलियन व्यूज आ जाएंगे। 500 रुपए शेयर बाजार में निवेश करके ख्वाब देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुनाऊंगा। किसी ने शेयर मार्केट के क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। पता चला वो क्लासेस चलाने वाले सर खुद लॉस में हैं और वो अपना लॉस कवर करने के लिए क्लासेस चला रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफी दिखावा चल रहा है। उनका लक्ष्य आपको आकर्षित करके कोर्स या कुछ प्रोडक्ट को बेचना है। ऐसे ही विचार आज के युवाओं को मानसिक तौर पे बर्बाद कर रहे हैं। आमतौर पर सफलता को पैसे से या भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपका नाम है, तो आपको सफल व्यक्ति मान लिया जाता है। लेकिन यह सफलता की परिभाषा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार सफलता के मायने बदलते हैं। एक सन्यासी की सफलता ईश्वर को पाने में है, एक विद्यार्थी की सफलता उसके पास होने में है, एक गरीब की सफलता खुद की भूख मिटाने में है, एक मरीज की सफलता उसके स्वस्थ होने में है। हम अपने आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शक्ति के अनुसार ही हम अपना लक्ष्य बनाते हैं, और जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं तो हमें एक जीत का एहसास होता है जो हमें सच्चा सुख देता है। यही सफलता कहलाता है। एक बार एक लड़का गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने दादी जी के पास गांव आया। एक दिन जब वह अपने दादी जी के साथ बिताता था, तो उसने अपने दादी जी से एक सवाल पूछा कि सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस क्या है। इस पर दादी जी ने उसे पास ही की एक नर्सरी में जाकर वहां से दो पौधे खरीद लाने को कहा। उन्होंने एक पौधा घर के अंदर और एक पौधा घर के बाहर लगाने को कहा। उस लड़के ने ऐसा ही किया। बाद में दादी जी ने अपने पोते से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इन पौधों में से सबसे अधिक सफल कौन होगा? लड़के ने जवाब दिया कि घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वो प्राकृतिक खतरों से बचा रहेगा, जबकि बाहर जो पौधा लगाया गया है उसको काफी चीजों से खतरा है। दादी जी अपने पोतों की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों बाद लड़का वापस शहर चला गया। कुछ साल बाद जब वह लड़का वापस दादी जी से मिलने आया अपने गांव, तो उसने अपने दादी जी से पौधे के बारे में पूछा। दादी जी ने उसे घर के अंदर लगाया गया पौधा दिखाया। वो पौधा अब एक बहुत बड़ा पौधा बन चुका था। लड़के ने अपने दादी जी के ओर देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि यही पौधा ज्यादा सफल होगा, वैसे बाहर वाले पौधे का क्या हुआ? दादी जी उसे बाहर लेकर आई तो लड़का हैरान हो गया। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसने दादी जी से पूछा कि ये कैसे संभव है कि बाहर वाला पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और अंदर वाला पौधा उतना विकसित नहीं हो पाया।
जबकि अंदर वाला पौधा प्राकृतिक

0: खतरों से सुरक्षित था।
1: दादी जी ने उसे बताया कि जीवन में खतरों से जूझकर ही सफलता हासिल होती है। सफलता का राज, सीक्रेट टू सक्सेस यही है। कहानी का तर्क यही है कि मुश्किलों का सामना करने वाले को ही सफलता मिलती है। इसीलिए कहा गया है, लहरों से डरकर नदियां पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। With this wonderful motivational story, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. I repeat feedbackamc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: है नमस्ते इंडिया, स्क्रॉल स्वाइप क्लिक, अल्फा जनरेशन, टेक सेवी, डायनेमिक और आज की दुनिया के यंगेस्ट कंज्यूमर्स और उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं इन तीन वर्ड्स स्क्रॉल स्वाइप क्लिक के आसपास ही घूमती नजर आती है ना। इन्फॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पे है, दुनिया उनकी स्क्रीन पर है, लेकिन इस डिजिटल स्पीड के बीच कभी कभी जरूरत पड़ जाती है एक छोटे से पॉज की, एक डिटॉक्स की। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जेन के आज के एडिशन लेट्स डिटॉक्स में हम बात करेंगे परफेक्शन डिटॉक्स की। कैसे परफेक्शन की इस दौड़ में थोड़ा सा ब्रेक लें, कैसे अपने माइंड को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बोझ से फ्री करें और कैसे परफेक्ट बनने की कोशिश से ज्यादा अपने आप का बेटर वर्जन बनने पर फोकस करें। क्योंकि बंधु, जिंदगी परफेक्ट होने का नाम नहीं, जिंदगी तो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने, सीखने और अपनी असली रिदम को महसूस करने का नाम है। मेरा नाम है प्रियंका वर्मा, गुड इवनिंग।
1: सरहद पे

बढ़ते चलो। वेल दोस्तों, एक ऐसा पेट्रियोटिक सॉन्ग है ये जो ना सिर्फ सुनने तक सीमित रहता है बल्कि दिल को छू लेता है। गाने की शुरुआत से जो मार्चिंग बीट सुनाई देती है ना, वो सोल्जर्स के कदमों की गूंज जैसे लगती है। डिसिप्लिन, फोकस्ड और फियरलेस। और जब भारत माता का नाम आता है ना, तब ये गाना सिर्फ सुना नहीं जाता, सिर श्रद्धा से झुक जाते हैं, आंखें भर आती हैं और दिल और ज्यादा मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा हो जाता है। जय हिंद। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम सुन रहा है लेट्स टॉक, जहां बात करें परफेक्शन डिटॉक्स की। जी हाँ, ऐ जाते हुए लम्हो, जरा ठहरो जरा ठहरो, मुझे खुद से मिलना है इस भागती हुई जिंदगी में, अपनी धड़कनों को सुनना है, बस कुछ लम्हे चुराकर वक्त से खुद के नाम करना है। तो आइए दोस्तों, आज कुछ देर के लिए ही सही, इस फास्ट पेस दुनिया से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर ठहर कर खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ बैठना ही सबसे बड़ी इमोशनल हीलिंग होती है। सो लेट्स डिटॉक्स के आज के एडिशन में बात होगी परफेक्शन डिटॉक्स की। कभी कभी हम जिंदगी में हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में इतना उलझ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि खुद को जीना ही भूल जाते हैं। हर काम में कोई कमी ना रह जाए, हर फैसला बिल्कुल सही हो और हर जगह आप अपनी बेस्ट इमेज ही दिखाएं। ये प्रेशर धीरे धीरे हमारी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, और जब एक छोटी सी गलती भी हमें कभी अपनी लगने लगे कि हमारी कमी है, और जब अपने अचीवमेंट से ज्यादा अपने इम्परफेक्शंस को देखने लगे, और जब परफेक्ट होने की चाहत हमारी खुशी और सुकून से बड़ी हो जाए, तो शायद वक्त है अपनी सोच का छोटा सा डिटॉक्स करने की। आज मैं और मेरा डेली रूटीन, यानी आपका, आप और आपका डेली रूटीन, एक छोटा सा सेल्फ चेक इन करेंगे। जी हाँ, जहाँ आप अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, या सिर्फ परफेक्ट दिखने के प्रेशर में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस मुझे मोटिवेट कर रही हैं, धीरे धीरे मेरे कॉन्फिडेंस और इनर पीस को कम कर रही हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी, क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, या मैं अपने आप को ही बस जज करने में लगी हूँ, क्या मैं अपनी छोटी छोटी खुशियों को, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो आइए थोड़ी देर के लिए परफेक्शन के प्रेशर को साइड में रखते हैं, खुद को बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करते हैं और अपनी सोच को जेंटली डिटॉक्स करते हैं, क्योंकि जिंदगी का खूबसूरत सफर परफेक्ट होने से नहीं बंधु, बल्कि हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने से पूरा होता है। जब हम परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकल कर प्रोग्रेस की राह पे चलते हैं ना, तब अपनी असली क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और खुशी से जुड़ पाते हैं, और तब जिंदगी की असली फ्रिक्वेंसी वापस आती है, तब हर खुशी एक नई उम्मीद लगने लगती है, और एक छोटा सा कदम एक खूबसूरत जीत बन जाता है। अब आप कहोगे, प्रियंका ज्ञान मत दो, पता भी है कितना प्रेशर रहता है। अरे प्रियंका कहाँ ज्ञान देगी, जी हाँ वो भी आबे की जैसी है। आपसे बातें करते करते इस बात में मैं करते करते बस शायद मैं भी कुछ सीख जाऊं और आप भी कुछ समझ जाएं। जी ना, क्योंकि अपने आप पे इतना प्रेशर क्यों डालना, एक ही तो जिंदगी है। अगर आप कुछ हमसे शेयर करना चाहते हैं ना परफेक्शन डिटॉक्स के बारे में, जो आपने मेरे प्रोग्राम अभी तब तक सुना है, तो 9868107070, 9868107070 पर भेज सकते हैं।

वैसे दोस्तों, ये गाना सुनते वक्त लग रहा है ना, कोई किसी भीड़ वाले शहर में अपनी इनर वॉइस को सुन रहा। जी हाँ, ये गाना एक सेल्फ डिस्कवरी और इमोशनल फ्रीडम का साउंड ट्रैक है, बिल्कुल। और कविता जी की जो वॉइस है ना, उसमें एक अलग ही रूहानी रंग दे देती है इस ट्रैक को। उनके गाने में, उनकी गायकी में एक मासूमियत और गहराई है जो हर लफ्ज को दिल से छूती है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप परफेक्शन डिटॉक्स के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, तो हमें कर दीजिए। और जैसे कि ये हमें मैसेज आ रहा है कि गुड इवनिंग प्रियंका जी, मैं हर काम परफेक्ट करते करते थक चुकी हूँ, क्या मुझे ब्रेक मिल सकता है? और ये मैसेज आया है पिंकी का आया है ये हमें। ओके, आपने कोई जगह का नाम नहीं लिखा पिंकी, अगर आप जगह का नाम बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यही मैंने आपको पता है कि मैं प्रोग्राम शुरू करने वाली थी, अपना कुछ बात करने वाली थी, लेकिन जैसे आपका मैसेज फ्लैश हुआ और कहा कि पिंकी ने कहा कि मैसेज आप मैं परफेक्ट काम करते करते थक चुकी हूँ, तो इस थक से थोड़ा ब्रेक ले लो ना, बिल्कुल ब्रेक लो। अभी मैं कोई भी बात आपसे इस बारे में बस ये कहना चाहूंगी, प्रोग्राम को तो हम आगे बढ़ाएंगे।

वेल, आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर आई क्योंकि मुझे मैसेजेस से पता लग रहा है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अल्फा जेन सुन रहे हैं आप। परफेक्शन का जो प्रेशर होता है वो बहुत होता है। जैसे पिंकी का मैसेज आया था, पिंकी ने एक स्माइली भेजी है मुझे। खुद को हर पल किसी से बेहतर साबित करने की दौड़ छोड़ दीजिए बंधु। खुद को हर पल किसी से बेहतर साबित करने की दौड़ छोड़ दीजिए। जिंदगी जीने के लिए परफेक्ट नहीं, अपना होना जरूरी होता है। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर सुर में महसूस कीजिए। यही तो जिंदगी की असली सुकून है। इंसानियत की धुन पर इसे जीना सीखिए। आज के समय में हम अक्सर परफेक्शन के प्रेशर में जीने लगते हैं। ऑफ कोर्स प्रियंका, है ना, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और कुछ दोस्त हमारे अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी करने लगते हैं। हर काम को परफेक्ट करना है, हर जगह खुद को बेस्ट।

करना और दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है, ये सब धीरे धीरे हमारे मन पर एक बोझ बन सकता है। और आज के समय में परफेक्शन का प्रेशर एक कॉमन साइकोलॉजिकल चैलेंज बन गया है। साइकोलॉजी के अनुसार परफेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक हेल्दी परफेक्शन जो हमें इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है, और दूसरा अनहेल्दी परफेक्शनिज्म जो स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ डाउट को बढ़ा देता है। लेकिन इस परफेक्शन की दौड़ में कई बार हम अपनी असली खुशी, अपनी पहचान को पीछे छोड़ देते हैं। गलतियां भी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा होता है, जी हाँ, वही हमें सीखने, बढ़ने और नए एक्सपीरियंसेस से जुड़ने का मौका देता है। परफेक्ट होने की चाहत में अगर हम खुद को ही एक्सेप्ट करना भूल जाएं, तो जिंदगी के असली रंग कहीं पीछे छूट जाते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि इंसान की खूबसूरती उसकी कमियों में भी छुपी होती है। हमारी गलतियां, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे स्ट्रगल्स ही हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देते हैं। परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से जीने की जरूरत है। सोशल मीडिया के दौर में कंपैरिजन तो बहुत ही बढ़ गया है ना, ये तो हम सब अपने आप ही महसूस करते हैं। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी का एक खूबसूरत पल देखकर अपनी जर्नी को कम समझने लगते हैं। लेकिन हर इंसान का सफर अलग होता है, हर किसी का वक्त और रास्ता अलग होता है। अपनी प्रोग्रेस को अपनी कल की पहचान से कंपेयर करना ही असली ग्रोथ है। इनफैक्ट दोस्तों, परफेक्शन का प्रेशर सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी थका देता है। जब हम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो अंदर एक सुकून पैदा होता है। खुद के लिए केयर करना, प्यार रखना भी एक तरह का इमोशनल डिटॉक्स है। जिंदगी एक खूबसूरत गीत की तरह है, जिसमें हर सुर की अपनी अहमियत होती है। कभी खुशियां के पल आते हैं तो कभी चैलेंजेस, लेकिन यही अलग अलग एहसास मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। इसलिए परफेक्शन की दौड़ में खुद को मत खोइए, अपनी कमियों को, अपने जो आपको लगता है कि मेरी कमी है उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपनी जर्नी को सेलिब्रेट कीजिए। इंसानियत, प्यार, अपनेपन की धुन पर जिंदगी का ये खूबसूरत गीत जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी परफेक्ट होने के लिए नहीं बल्कि खूबसूरती से जीने के लिए। और फिलहाल प्रोग्राम में एड ब्रेक होना जरूरी है, बिल्कुल मत जाइएगा।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

बैक प्रोग्राम सुन रहे हैं आप परफेक्शन डिटॉक्स। जी हाँ, ये है अल्फा जैन में। आज हम इस मुद्दे पे, इस इशू पे बात कर रहे हैं और परफेक्शन डिटॉक्स, सीरियसली परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट करते करते किस प्रेशर में हम आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। हर रोज थोड़ा सा बेहतर बनना ही जीत है, हर रोज थोड़ा सा बेहतर बनना ही जीत है। परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस सीखने की रीत है। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर का मोड़ होता है। हर कदम पे खुद से मिलना ही जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। आज की दुनिया में दोस्तों, हम अक्सर परफेक्ट दिखने, परफेक्ट बनने की दौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी प्रोग्रेस को देखना ही भूल जाते हैं। हर काम फ्लॉलेस हो, हर डिसीजन सही हो, हर जगह पर सबसे बेहतर नजर आए, ये सोच धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी किसी कॉम्पिटिशन का स्कोरबोर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जहाँ हर दिन कुछ सीखने और खुद से थोड़ा बेहतर बनने का चांस मिलता है। अब जैसे पिंकी का मैसेज आया था, ये मैसेज मुझे बिल्कुल मेरे जहन में है। पिंकी ने कहा कि वो थक चुकी हैं परफेक्ट करते करते। अब उनका मैसेज है कि वो कहाँ से, लोनावला लिखा है उन्होंने, ये मुंबई से हमें मैसेज आया है, उन्होंने जगह बताई है और एकदम से फ्लैश हुआ है। वेल, मैं ये कहूंगी पिंकी आपसे कि आप जैसा हाल हम सबका है, और हम कहीं ना कहीं कितने बेहतर भी होते हैं, बस उसको देख नहीं पाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि दोस्तों हमसे परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो अपनी प्रोग्रेस को देखना भूल जाते हैं। इनफैक्ट दिमाग में स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, इसी दौरान कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। अपनी छोटी सी गलती को अपनी कमी समझने लगते हैं और धीरे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट पर हावी होने लगते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शन का प्रेशर लेना बिल्कुल हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके ऑपोजिट ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि हमें हर मिस्टेक का फीडबैक, हर चैलेंज एक नया लेसन और हर एक नया दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनने का नया मौका देता है। इसलिए गलतियां फेलियर का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि लर्निंग का फीडबैक होती है। जब हम किसी गलती को एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं इनफैक्ट, तो इसे सीख कर दोबारा कोशिश करते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मजबूत होता है और वही रियल ग्रोथ होती है। खुद को थोड़ा सा यू नो, कल से हम बेहतर करें। जी हाँ, जरा सोचिए, एक पौधा कभी एक दिन में वृक्ष नहीं बनता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, हर मौसम को जीतता है, आंधियों का सामना करता है और फिर एक दिन मजबूत बनकर खड़ा हो जाता है। इंसान की ग्रोथ भी कुछ ऐसी होती है, छोटे छोटे स्टेप्स ही बड़े बदलाव की फाउंडेशन रखते हैं। और सोशल मीडिया, इसके बारे में हमेशा जिक्र मैं करती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं इस दौड़ को, कंपैरिजन की दौड़ को, एक इसमें मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं ट्रैप कर लिया है, इसकी आदत बन चुकी है। हम दूसरों के अचीवमेंट्स देखते हैं लेकिन उनके स्ट्रगल्स देख नहीं पाते। किसी की सक्सेस स्टोरी सिर्फ एक ब्यूटीफुल चैप्टर देख अपनी पूरी किताब को की वैल्यू मत कम समझने लगे दोस्त, क्योंकि हर इंसान का सफर अलग होता है, हर किसी की स्पीड रफ्तार अलग होती है और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी अलग होता है। रिसर्च ये भी बताती है कि जो दोस्त हमारी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, सेल्फ कंपैशन रखते हैं, उनमें रिजिलियंस और इमोशनल वेलबींग ज्यादा होती है। वो फेलियर से टूटने के बजाय उससे सीखते हैं, नए हौसलों के साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए परफेक्शन के प्रेशर से ज्यादा प्रोग्रेस की खुशी को अपनाइए, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, हर गलती से सीखिए, हर दिन खुद का बेटर वर्जन बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर का मोड़ होता है और हर कदम पे खुद से मिलने की जिंदगी का खूबसूरत एहसास होता है। फिलहाल ये गाना होता है, अभी अभी तो आए हो, अभी ना कहो जाने।

वेलकम बैक। वेल दोस्तों, हर काम का 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप सुन रहे प्रोग्राम लेट्स डिटॉक्स आकाशवाणी रेन पर, जहां बात हो रही है परफेक्शन डिटॉक्स की। और हम बात कर रहे हैं कि हर काम का 100% होना, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। हर पल सब कुछ परफेक्ट करना भी जरूरी नहीं। परफेक्ट नहीं, एक्सीलेंस की तरफ बढ़िए, फिर देखिए बंधु कैसे सक्सेस अपने आप आपके पास भागती चली आएगी। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम परफेक्ट बनने की कोशिश में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने प्रोग्रेस को देखना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक हर काम बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन एक ऐसा गोल है जिसे पाने की कोशिश में हम कई बार अपनी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और खुशी खो देते हैं। परफेक्शन और एक्सीलेंस में एक गहरा डिफरेंस होता है। परफेक्शन का मतलब है हर चीज में कोई ना कभी कमी ना रहने देना, जबकि एक्सीलेंस का मतलब होता है हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करना। परफेक्शन हमें गलतियों से डरना सिखाता है, तो एक्सीलेंस हमें गलतियों से सीखना सिखाता है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग सिर्फ परफेक्ट रिजल्ट के पीछे भागते हैं, वर्क से स्ट्रेस, सेल्फ डाउट का शिकार हो सकते हैं। उनका कंसर्न अपनी लर्निंग और ग्रोथ के बजाय इस बात पर ज्यादा होता है कि कभी कोई कमी ना रह जाए। इसके ऑपोजिट ग्रोथ माइंडसेट वाले दोस्त हमारे चैलेंजेस को एक मौके की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि हर कोशिश, हर एक्सपीरियंस और हर मिस्टेक उन्हें कुछ नया सिखाती है। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस, जब हम किसी नए स्किल को प्रैक्टिस करते हैं और अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, तो ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी हमारा ब्रेन एक्सपीरियंस के थ्रू अडैप्ट और इम्प्रूव करने का पोटेंशियल रखता है। जी हाँ, देखिए साइकोलॉजी भी यही कहती है, न्यूरोसाइंस भी। एक्सीलेंस का मतलब परफेक्ट रिजल्ट नहीं, बल्कि अपने पूरे पोटेंशियल के साथ सिंसियर एफर्ट करना है। एक साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन या प्रोफेशनल कभी भी अपनी अक्सर मोस्टली अपनी कोशिश में पहली कोशिश में परफेक्ट नहीं होते। इम्प्रूवमेंट का सफर एक्सपेरिमेंटेशन, फीडबैक और प्रैक्टिस से गुजरता है। हर अटेम्प्ट हमें कुछ नया सिखाता है और हमें अपने गोल के करीब ले जाता है। तो दोस्तों, जिंदगी में अक्सर पहली कोशिश परफेक्ट नहीं होती। एक बच्चा भी ना जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, और लेकिन हर गिरना उसे एक नया बैलेंस सिखाता है। इसी तरह इंसान भी अपनी गलतियों एक्सपीरियंस से ही स्ट्रांग बनता है। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो रुकते नहीं, बल्कि सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज के समय में कंपैरिजन भी परफेक्शन के प्रेशर को बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया अगेन इसने तो बहुत, मतलब सोशल मीडिया पे सब अच्छी चीजें भी होती हैं, मतलब कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ फिल्टर करके देखना होता है। हम दूसरों के सक्सेस का खूबसूरत हिस्सा देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का हार्ड वर्क, स्ट्रगल, फेलियर देख नहीं पाते। हर इंसान का सफर अलग होता है, हर किसी की स्पीड अलग होती है, और जरूरी नहीं हम अपना कंपैरिजन किसी और से करें। लेकिन अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। एक्सीलेंस का रास्ता डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से होकर गुजरता है। जब अपने काम को ऑनेस्टली करते हैं ना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। जी हाँ, तब सक्सेस भी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी है। इसलिए एक परफेक्ट प्लान से ज्यादा जरूरी है एक सिंसियर एक्शन, यानी 80% कंप्लीट किया हुआ काम भी 100% परफेक्ट प्लान से बेटर हो सकता है, जो हमें आगे बढ़ने का चांस देता है। इसलिए परफेक्शन के प्रेशर को छोड़िए, एक्सीलेंस के सफर को अपनाइए। जी हाँ, छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए और खुद का बेटर वर्जन बनिए। और इसी के साथ मैसेज आया है जोया का, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने हमें मैसेज किया, आई एम अ वेरी पॉजिटिव थिंकर इवन नेगेटिव टाइम्स। कोविड लॉकडाउन वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। पिंकी, यू मस्ट गो इन टू नेचर, मे बी अ पार्क, रिवर, बीच, एनीवेयर सेफ एंड क्लोज टू होम। लुक एट बर्ड्स, क्लाउड्स, ट्रीज, यू विल फील फ्रेश एंड पॉजिटिव। देखिए, पिंकी का मैसेज जैसे ही आया, फ्लैश हुआ, मैंने एकदम से तुरंत लिया। और ये मैसेज बहुत सारे लोगों के दिलों को छुआ। जोया ने पिंकी को भी एक अपना एक्सपीरियंस जो है उसे एडवाइस किया है, बहुत अच्छी बात है। एंड जोया, दैट्स सो अपलिफ्टिंग कि लॉकडाउन टर्न इनटू अ ब्लेसिंग फॉर यू, सो इंस्पायरिंग। आई एम श्योर आपने जो टिप दिया है कि आप नेचर में जाइए, बीच पे जाइए, कहीं पर जाए तुम्हें सेफ लगे, जहां तुम्हारे घर के आसपास हो, जो जहां तुम्हें फ्रेशनेस महसूस हो, पॉजिटिव हो, वहां तुम जाओ। बिल्कुल वहीं जाना चाहिए जहां आपको पॉजिटिव फील आप करें। बहुत अच्छा मैसेज है। और इसी के साथ एक ट्रैक आपका वेट कर रहा है।

वैसे इस ट्रैक में ना बहुत इंटेंस ट्रैक है, इसमें प्यार की सॉफ्टनेस और लॉन्गिंग दोनों ब्यूटीफुली ब्लेंड होते हैं, और इसका रियल मैजिक, इस ट्रैक का रियल मैजिक है इनके वोकल्स जैस्मीन और सतेंद्र के, जो अलग अलग टेक्सचर्स के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवास क्रिएट करते हैं। उन दोनों के इमोशनल ट्रांजिशन मैजिकल है, जहाँ एक गाना दूसरे एक एहसास से दूसरे एहसास में स्मूथली ग्लाइड होता है। अब इसी के साथ आपके मैसेजेस ले लेते हैं। हर दिन बेहतर बनना ही जीत है, परफेक्शन पीछे भागते हुए अपने प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं देते, छोटे छोटे स्टेप्स ही सफलता छुपी होती है उनमें, और हर गलती से कुछ सीखना चाहिए। पंकज हमें अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, इन्हें प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, ओके ये मैसेज है, ओके डॉली का मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि पिंकी पुष्पा प्रिया प्रियंका सर पी नाम वाले कुछ भी हो जाए परफेक्ट होना चाहिए। ओके इस रूल को फॉलो करते हैं, काम पूरा हो गया पर कुछ कमी रहे फिर से कर लेंगे, पर परफेक्शन ओके मानता है, एक्सीलेंस पर फोकस करना, अच्छी टिप्स दी हैं, अब मैं भी नहीं करती परफेक्शन पर ध्यान। चलिए अच्छा लगा ये जानकर, क्योंकि काम अच्छी तरह से करना है, बेहतर बनना है, लेकिन अपने पर प्रेशर नहीं देना, एक ही तो जिंदगी है ना, खुश रहिए खुश रखे भी। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, ये हमें धुनी चंद लगते हैं चंडीगढ़ से, और इसी के साथ हर दिन जिंदगी में बेहतर बनने का मौका देता है हमें, है ना। पर परफेक्शन के प्रेशर में हम अक्सर अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को देखना भूल जाते हैं, जब दोस्तों परफेक्शन के बोझ को हल्का कर देते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी और सुकून की धुन फिर से गुनगुनाने लगती है। जी हाँ, तो जिंदगी का एक खूबसूरत गीत की तरह है, अपनी असली रिदम में बहना है हमें, हमें आगे बढ़ना है, और फिलहाल ये ट्रैक आपके लिए है। इसी के साथ देशभक्ति के एसेंस को महसूस कीजिए, फिजाओं में महकती देशभक्ति। इसी के साथ प्रियंका वर्मा को दीजिए इजाजत, टेक केयर, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद की 1892 में मैसूरू की ऐतिहासिक यात्रा की याद में बनाया गया है, जब उन्होंने मैसूर के दीवान सर के श्रेष्ठाद्री अय्यर से मुलाकात की थी और शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा के लिए मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक का भ्रमण किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने स्मारक में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट निपटान किया जा चुका है और शेष अवशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई गई। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा सेवानिवृत्त का आज नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल सुबह 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत 7 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 28 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru. The memorial commemorates Swami Vivekanand's historic visit to Mysuru in 1892 when he met the Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Chamarajendra Wadiyar for his journey to the USA to participate in the Parliament of Religions in Chicago. The Prime Minister was shown around the Vivek Smarak, where he paid floral tributes at the Swami Vivekanand statue. He also planted a sapling at the Smarak. The Prime Minister will be addressing the gathering in a short while from now. Prime Minister Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport in Bhogapuram in Vizianagaram district of Andhra Pradesh today. He also dedicated to the nation, inaugurated and laid the foundation stone for key infrastructure projects worth around 18,000 crore rupees. Addressing the gathering, Mr. Modi said the projects launched today, spanning roads and energy security, reflect the rapid pace of Andhra Pradesh's development. Highlighting the significance of the new airport, the Prime Minister said it would serve as the runway for the growth and development of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and act as a launchpad for a brighter future and greater opportunities for the youth of the state.
1: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
2: The Prime Minister also witnessed a traditional Thimsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant tribal culture of North Andhra. Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukti Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations, and more than 125 partner spiritual organizations will also join the program virtually. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kilogram cylinder today. The new price of a commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,738 rupees. The price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata will now be 2,872 rupees and 50 paise. And in Mumbai, it will be 2,691 rupees 50 paise. In Chennai, 2,906 rupees. The Indian Railways has approved the introduction of a new daily express train service in Maharashtra between Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Mumbai and Savantwadi Road Railway Station in Sindhudurg district. The Ministry of Railways said the new service will provide direct, convenient and reliable rail connectivity across the 510-kilometre route, benefiting thousands of passengers travelling for tourism, education, employment, business and social purposes. Indian boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar won gold medals in their respective final bouts at the Commonwealth Games in Glasgow today. Preeti claimed the gold with a dominant 5-0 victory over Canada's Scarlett Delgado in the women's 54kg before reigning world champion Jasmine clinched the yellow medal in women's 57kg with the same scoreline against Northern Ireland's Michaela Walsh, who was the defending champion. Indian triple jumper Praveen Chitravel won silver while Selva Prabhu bagged the bronze medal in the Commonwealth Games. India is currently placed 6th in the overall medal standings with 27 medals, 7 gold, 13 silver and 7 bronze. And with that we end this news bulletin.
3: Sri শ্রোতাসকলৰ বাবে এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈ আছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত পপি চন্দ, ফটিক চন্দ্ৰ বৰ্মন, পম্পা চন্দ, আনোৱাৰ আলী, মায়ামণি শৰ্মা, ট্ৰান্সমিটাৰত ৰমেন কুমাৰ শৰ্মা, ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন, মাইক্ৰফোন তথা ডিউটি ৰুমৰ দায়িত্বত এয়া মই শ্ৰী বিপাঞ্চি দাস শইকীয়া। আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ শ্ৰোতাসকলে নিউজ অন AIR মোবাইল এপৰ জৰিয়তেও শুনিবলৈ পাৰিব। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এয়া আগবঢ়াইছো আমাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত বিশেষ অনুষ্ঠান যুৱবাণী।

0: আকাশবাণীর বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
1: আওয়ার ভয়েস গেটস ইউ হার্ড এভরিওয়্যার।
0: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ করবলৈ আর সরকারি আসনির বিষয়ে অবগত করাবলৈ আমার ফোন নম্বরটি হৈছে
1: 6900453528।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটী সর্বক্ষণ সর্বত্র আপনার হৈতে।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
3: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই জয়া ভাৰতী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
4: मैसूरू भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरू का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
4: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
3: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मिन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru this evening. The memorial commemorates Swami Vivekananda's historic visit to Mysuru in 1892, when he met Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Chamarajendra Vadiyar for his journey to the USA to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Addressing the gathering on the occasion, Prime Minister Modi said Swami Vivekananda truly embodied the spirit of India. He highlighted that the country's youth are driving global growth.
4: Swami Vivekananda युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
5: Earlier in the day, Prime Minister Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vizianagaram district of Andhra Pradesh today. He also dedicated to the nation, inaugurated and laid the foundation stone for key infrastructure projects worth around 18,000 crore rupees. Addressing the gathering, Mr. Modi said the projects launched today, spanning roads and energy security, reflect the rapid pace of Andhra Pradesh's development. Prime Minister Modi also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant tribal culture of North Andhra. National Security Advisor Ajit Doval was conferred the Lokmanya Tilak National Award 2026 at a function held at Pune today. The award, instituted by the Lokmanya Tilak Smarak Trust, was presented by Union Home Minister Amit Shah on the occasion of the 106th death anniversary of Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Speaking on the occasion, Mr. Shah said Ajit Doval has made an outstanding contribution to strengthening India's national security. Accepting the honour, Mr. Doval said he was deeply humbled by the recognition. He said freedom is not merely the liberty to act as one wishes, but a responsibility to place national interest above all else. The Union Government today released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer scheduled for the 10th of August. In a statement, the Finance Ministry said the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. Oil marketing companies have reduced the price of commercial LPG gas by about 200 rupees per 19 kilogram cylinder today. The new price of commercial LPG cylinder in Delhi will now be 2,700.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: আকাশবাণী সম্প্ৰতি বাৰ্তাঃ শ্ৰূয়ন্তাম্। প্ৰৱাচকঃ যতীন শৰ্মা। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेशस्य भोगापुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अथ च आधारभूत संरचना ऊर्जा क्षेत्रयोः 18,000 कोटि रूप्यकाणां प्रकल्पाः अपि शुभारंभिताः। नाथुलाद्वारस्य माध्यमेन भारत चीनयोः मध्ये सीमापार व्यापारः पुनः समारब्धः। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोवालः लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कारेण सभाजितः। ग्लास्गो नगरे आयोजिते राष्ट्रमंडल क्रीडोत्सवे महिलानां 45-57 किलोग्राम वर्गयोः जैस्मिन लंबोरिया प्रीति पवार इत्येताभ्यां स्वर्ण पदकं विजितम्। अपि च ताइपे ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायाः चरम स्पर्धायां प्रविष्टा भारतस्य 17-वर्षीया क्रीडिका तन्वी शर्मा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् आंध्रप्रदेशः द्रुतगत्या अग्रे सरति। सहैव केन्द्र सर्वकारः विशालस्तरीय आधारभूत संरचनायाः औद्योगिक विकासस्य च माध्यमेन स्वर्ण आंध्रस्य अथ विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं पूर्णतः कटिबद्धो वर्तते। विजयनगरम जनपदस्य भोगपुरम स्थले अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनस्य उद्घाटनोत्तरम जनसभां संबोधयन् प्रधानमंत्री न्यगादीत् यत् विमानपत्तन मार्गोर्जा क्षेत्राणि समित्य 18,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनाः केन्द्र राज्ययोः एनडीए सर्वकारस्य नेतृत्वे राज्यस्य द्रुतगत्या जायमानां प्रगतिं प्रदर्शयति।
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमन्त्रिणा एतत् नवीन विमानपत्तनम् आन्ध्रप्रदेशस्य विशेषतः उत्तरान्ध्रक्षेत्रस्य प्रगतेः धावनमार्गः सहैव राज्यस्य यूनाम् आकांक्षाणां क्षेपणमञ्चः इति प्रतिपादितम्। सः अघोषयत् यत् अस्य विमानपत्तनस्य नामकरणं स्वतन्त्रतासेनानिनः अल्लूरी सीतारामराजुवर्यस्य नाम्ना कृतम्, यत् आगामी वंशाय देशभक्तेः समाजसेवायाः च प्रेरणां प्रदास्यति।
2: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है,

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम ज्वाल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा।

0: इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117,85,00,000 रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
1: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44,55,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379,35,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500,00,000 रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193,95,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019,00,000 रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगतोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर

0: में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेंगे। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉटपुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekananda Cultural Youth Center in Mysuru. credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athletes Oman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artefacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
4: Swami Vivekananda ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं. लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है. भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है. आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है. किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से.
3: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well.
4: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है. पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं. 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई. 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं. आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है.
3: Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Governor Thavarchand Gehlot and the President of Ramakrishna Math, Srimad Swami Gautamanandji Maharaj were present on the occasion. Earlier in the day, Prime Minister Modi launched development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure at Vizianagaram in Andhra Pradesh. Addressing a public meeting, the Prime Minister said Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Vikasit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.
4: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है. एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं. इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं. ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है. मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ.
3: Prime Minister Modi also inaugurated the Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogapuram and said it is a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Alluri Sitaram Raju, which will inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
5: बीते 12 इयर्स में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है।
3: Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Vikasit Bharat Sankalp Abhiyan tomorrow through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. Union Home Minister Amit Shah has approved the advance release of 2,117.85 crore rupees from the central share of the State Disaster Response Fund SDRF to support the states affected by floods during the ongoing southwest monsoon. We have a report.
6: The assistance approved for the affected states includes 44.55 crore rupees to Arunachal Pradesh as advance release of the first installment for the financial year 2026-27. For Assam, 379.35 crore rupees has been sanctioned as the first installment, while Gujarat has been approved 500 crore rupees. Himachal Pradesh, which had already received the first installment, has been sanctioned 193.95 crore rupees as advance release of the second installment. While Odisha has been sanctioned the second installment of 500 crore rupees. Further, Maharashtra has been approved 500 crore as advance release of the first installment. The Home Ministry noted that since the onset of the monsoon, the government has been continuously monitoring the flood situation in close coordination with the state governments. It added that the government has also extended all possible assistance, including pre-deployment of National Disaster Response Force teams and logistical support from the Ministry of Defence wherever required. Interministerial central teams have already been deputed to Arunachal Pradesh and Assam to assess the damages. It added that on the request of the government of Nagaland, an IMCT is also being constituted for the state. The Home Ministry further underlined that this approval aims to strengthen the ongoing relief and response measures of the flood-affected states. Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
3: Meanwhile, the flood situation in Odisha continues to remain grim, with the Mahanadi and its tributaries in spate, posing a fresh threat to low-lying areas of Katak, Puri, Jagatsinghpur, Kendrapara and Khordha districts. 10 downstream districts remain on high alert as Hirakud Dam continues releasing flood water through 22 gates. More than 8 lakh people have been affected, while over 2,69,000 people have been evacuated to safer places. Chief Minister Mohan Charan Majhi today conducted an aerial survey. Meanwhile, IMD has forecast more rainfall over parts of the state, keeping the flood threat alive. In Kerala, incessant heavy rain has caused widespread havoc, triggering landslides and severe waterlogging across the state. 6 rain-related deaths have been reported today from Kottayam, Idukki and Malappuram districts, while 6 people remain missing. More from our correspondent.
7: Amid the possibility of extreme heavy rainfall, the India Meteorological Department has issued a red alert for 9 districts and an orange alert for 5 districts in Kerala today. More than 1,400 people have been shifted to relief camps opened in the affected areas. The State Disaster Management Authority has informed that 17 houses were completely destroyed, while 127 houses were partially damaged in rain-related incidents today. Widespread damage to agricultural crops has also been reported from several districts. Shabarimala pilgrims have been advised to avoid visiting the temple on August 2nd and 3rd in view of the heavy rainfall and the rising water levels in the Pamba River. As water levels in several rivers and dams continue to rise, authorities have issued alerts to people living in nearby areas. Fishing activities have been banned along the Kerala, Karnataka and Lakshadweep coast until tomorrow. Anila Balakrishnan, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
3: In Maharashtra, continuous rainfall has led to a sharp rise in the water levels of rivers, streams and lakes, with water entering homes in several low-lying areas due to flooding. Jalgaon district has been among the worst affected, where 4 people have lost their lives due to the heavy rains till now. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Cross-border trade between India and China through Nathu La Pass in Sikkim.